तुझे सोच के भी यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है मेरी। आपके प्यार में हम तो सवरने लगे हैं। फुल फिल्म रास आयत 13।

प्यार के गीत नहीं लेकिन दर्द के गीत भी पसंद आते हैं मिक्स रहा है यार, मोय मोय सॉन्ग दर्द तन्हाई खान नार नुखन दर्द बरगी फॉर फिल्म हॉन्टेड मुझे दे दे हर गम चलो मिलकर सुनते हैं

बात करेंगे, अब तुमसे मोहब्बत हम दिन रात तो करेंगे। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो कौन है यार।

वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। कल सुना है जमी से उठ गया है वो।

अति सुंदर गजल आज की गुरुवार के सुबह के कार्यक्रम में मिलकर के हम लोगों ने सुने और ये भी पंकज की मीठी आवाज में आप सभी गजल संगीत प्रेमियों के नाम हमने पेश किए आज की सुबह के कार्यक्रम में। सुनो लो की सेवा में हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, खुद मोरखन। मैं हूं आपका सेवक विजय सरफी और हर रोज की तरह आज भी हम आ गए हैं अमर एफएम के स्टूडियो में आप सबको सेवा करने के लिए। अब से लेकर 5 बजे तक कुछ गजलें होगा और 5 बजे से 6 बजे तक तो कुछ भजन आप सभी जुनानों की सेवा में हम पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ये आशा करते हैं कि हर रोज की तरह आज भी हमारा हिस्सा का प्रोग्राम सुनकर आप सब पसंद करेंगे। तो चलते हैं कुछ और गजलें पंकज जी की मीठी आवाज में मैंने चुन कर रखे हुए हैं आज के प्रोग्राम में। तो ये सुंदर सा प्यारा सा गजल आप सभी के नाम लाया जा रहा है आज की सुबह के कार्यक्रम में।

ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम? बहुत जी चाहता है फिर से बोऊं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना, एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी थां नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम?

अब जो गजल पेश कर रहा हूं उसके शायर हैं जनाब शेख आदम अबू वाला।

प्रोग्राम और आगे जारी किया जा रहा है, जबकि पंकज जी की मीठी आवाज में एक से एक अच्छी अच्छी गजल मैंने चुन कर रखे हुए हैं आज के प्रोग्राम में। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गजल की ओर। और गजल का बोल है, सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं। ये सुंदर सा प्यारा सा गजल आज की गुरुवार के सुबह के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है आप सभी और सभी संगीत प्रेमियों के नाम।

काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते, बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है।

बढ़ते हैं आप सबको लेकर आज की गुरुवार के सुबह के कार्यक्रम में एक अंतिम गजल की ओर और ये भी पंकज जी की मीठी आवाज में मिल करके सुने गुने और गुनगुनाइए आज की बृहस्पतिवार के सुबह के कार्यक्रम में प्रस्तुत होते हैं आप सभी और सभी सुनोल के नाम।

चार बजे से लेकर अब तक जितनी ही गजलें पंकज जी की मिठी आवाज में हमने पेश किए हैं, यही आशा करते हैं कि सभी गजलें सुनकर आप सब पसंद किए। बाकी के जो प्रोग्राम है, चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। भजन कार्यक्रम हमेशा की तरह आज भी शुरुआत करते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा गणेश चालीसा के साथ। हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं करीबन 5 बजे, लगभग 5 बजे, तो गणेश जी के भजन, गणेश जी के चालीसा, गणेश जी के मंत्र या तो गणेश जी के आरती के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हमेशा हम आरंभ करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने कहा, गणेश चालीसा के साथ प्रदीप जी की मीठी आवाज़ में आप सभी के नाम प्रस्तुत होते हैं अमर FM के जरिए।

प्रोग्राम और आगे जारी किया जा रहा है, जबकि सुंदर सा शिव जी के मंत्र मिलकर के हम लोगों ने सुने आज की गुरुवार की सुबह में। तो यहाँ से एक प्यारा सा राम जी के भजन मिलकर के सुनते हैं।

अति सुंदर राम जी के भजन मिल करके हम लोगों ने सुने आज की सुबह में। यह हम आशा करते हैं कि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम करीबन 4 बजे से लेकर अब तक जो हमने पेश किए सुनकर आप सब पसंद किए। और चलिए आज जबकि गुरुवार है तो हर एक गुरुवार के रोज खास कथा पेश होते हैं दीदी सोनी पलटू जी के जरिए। तो यहाँ से होगा खास कथा दीदी सोनी पलटू जी के जरिए और उसके बाद में हम आप लोगों से मिलते हैं भजन यात्रा कार्यक्रम के साथ। हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम और आगे जारी करेंगे।

ये रेडियो हामोर है और हमारे प्रिय सुनने वाले भाई बहनों, यहाँ से श्री शिव कीर्तन रामायण समाज की श्रीमती दीदी सोनी पलटू जी से अब आप प्रवचन सुन

सादर राम राम नमस्कार और सीताराम प्राप्त हो। हमारे आदरणीय भक्त प्रेमियों, हर एक मंदिर में आप जाया करें, ये ही तो एक तीर्थ रूप होता है। आप हर एक आकर के उसमें भी भाग ले करके और अपने आत्मा को पवित्र कल्याण बनाएं। हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो ये तो माताएं के साल में आता है। हम जब मुश्किल उठा करके थोड़ा से इनके पास बैठ जाएं तो माँ अवश्य अपना कृपा को हमारे और आपके परिवार पर अवश्य दे देंगे। अप्रकट रूपा सबकी आधार स्वरूप सुंदरता को सुंदर बनाने वाली अत्यंत तेजोमयी माता को आप हर एक मिल करके प्रणाम करें। थोड़ा से वक्त दे करके हमारे भक्त प्रेमियों, बिजली के रेखा के समान कांति वाली सिंह के स्कंध पर विराजमान माता भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेकों कन्याओं से सेवित हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष को लेकर माँ तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली अग्निमयी है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा माँ दुर्गा देवी का मैं और आप हर एक मिल करके प्रणाम करते हैं। देवी बोली, जो पुरुष जो मानव एकाग्र होकर इन रात्रि में नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर देती हूँ। वाह, हमारे आदरणीय भक्त प्रेमियों, माँ दुर्गा कितना प्रेम से बताई कि जो मेरे को ध्यान करे तो उसका अवश्य सब कुछ दुख मुसीबत मैं टाल देती हूँ। हमें तो नित्य उनका प्रार्थना पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा हैं और पिता शंकर रूप मान करके हर एक इष्ट देव को इनमें देख करके और माता पिता को हमें सदैव नमन करना चाहिए। और जो मधु कैटप का नाश, महिषासुर का घात, शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम चरित्रों का महात्मय सुनेंगे या कथा, उन्हें किसी प्रकार का माता कहती है कि अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, कोई बाधा उसे नहीं झेल पाएगा, ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगा। हमारे भक्त प्रेमियों, माता कितना माता तो माँ होती है, हम और आप भी माताएं हैं, अपने बच्चों पे कितना प्रेरणा करते हैं और वे माँ तो शेरा वाली जगत जननी जगत के माता है। इसलिए मेरा महात्मय एकाग्र चित होकर जो मानव पढ़े एवं भक्ति से सदा सुने, मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। माता ऐसे बतला रही है, जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्मय पढ़ा जा रहा हो उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती, ऐसे माँ दुर्गा शेरावाली बोल रही है। वहां मेरा सदा सन्निधान रहता है। माता इतना दयालु है, आप अवश्य करके और माता के प्रति जा करके मंदिरों में और माता के कथन अवश्य श्रवण करें। हमारे भक्त प्रेमियों, उसे मैं प्रीति पूर्वक माँ बोलती है ग्रहण कर लेती हूँ और शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मय को भक्ति के साथ सुनता है उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाती है। वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। माता प्रेम भाव से हमें और आपको बतला रहे हैं, मिस मेरे इस महात्मय को मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्मय सुनने वाले पुरुषों के
शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त हो जाता है और कल यानी आनंदित रहता है। माता कितना प्रेम भाव से हम बच्चों को समझा रहे हैं, इसी से हमें सदैव अपने माता पिता को भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए तो हमारे दुर्गा माँ भी प्रसन्न रहती है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देती है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और सुनने से वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान करने से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, माता कहते इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मैं इस प्राणी मात्र को एक बार अवश्य दे देता हूँ। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मानव रोग्य से पीड़ित रहता है मेरे कथन को श्रवण करने से उनकी रोग कम हो जाता है। मेरी उत्पत्तियाँ का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है, ये भी माता बताती है कि इस प्रकार हर मानव को मेरी प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। सभी घोर विपत्तियां से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है विपत्ति से। हे मानव, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट हो करके और जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व का मोहन मोहनी करती है, वही जगत को पैदा करती है और अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट भी हो जाती है और विज्ञान रिद्धि प्रदान करती है। हे मानव, उसी ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महा माता के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में यानी व्याप्त हो जाती है। वही समय समय महा माता हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। हमारे आदरणीय भक्तगण, वही सनातनी माता देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है, रहती है। मनुष्यों की उन्नति समय में वही माता देवी घर में बुद्धिदायिनी माता लक्ष्मी रूपा बन करके और प्रकट हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी जैसे दरिद्रा जिसके घर में हर एक तरह के यानि दुराचार रहता है वहाँ माता दरिद्रा रूप भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से माता की जो पूजा तथा स्तुति करने पर यही माता धन पुत्र धन धर्म से मति शुभ गति आदि प्रदान कर देती है। हमारे आदरणीय भक्त प्रेमियों, माता के महिमा बहुत अगम है और बहुत अपरंपार है। मैया के महिमा, माता के महिमा हम प्राणी मात्र को अवश्य ठीक रूप में उनको गा लेना चाहिए। हमारे भक्त प्रेमियों, माता तो माता होती है, माता से हम रूठ भी जाए तो माता अपने गोद में बिठा करके हमें मंगलमय प्रदान कर देती है। माता तो सदा बच्चों के रक्षा के लिए हुई है और बच्चों के अपने गोद में बिठा करके माँ अवश्य उसको कल्याण करेगी। माता सदैव कल्याण ही के वास्ते हम सबको ये ज्ञान को दिए हैं।

छिन्मस्ता क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली माँ लक्ष्मी हो माँ, आप ही कालिका सरस्वती और तारा और माता दुर्गा हो माँ। हे अम्बे, आप परात्पर देवी भुवनेश्वरी सभी उत्तमों में सर्वोत्तम जगत माता हो माँ, आपको हम सब प्राणी मात्र के बारंबार प्रणाम प्राप्त हो माता। आप जगदीश्वरी हैं, सहस्त्रों देवता आपके अंशभूत हैं, आपकी शक्ति अकल्पनीय है माँ, आपको हम प्राणी मात्र के बारंबार प्रणाम चरणों में हैं। सुख संपत्ति ज्ञान यानी विद्या को देने वाली आप ही हो माँ, बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको मैं सिर नवा करके और प्रणाम करती हूँ। हमारे आदरणीय भक्त प्रेमियों, यहीं वाणी को रोकते हुए फिर से आप हर एक को मैं नमस्कार राम राम सीताराम कहते हुए रेडियो अमोर के हर एक कर्मचारियों को ऊपर भी माँ से यही विनय करती हूँ माँ, इन सबको भी आप ताकत शक्ति भक्ति दें ताकि हर समय जनता के सेवा कर सकें।

सुनने वालों भाई बहनों, इस तरह आप विशेष प्रवचन सुन रहे थे। कार्यक्रम में रही श्री शिव कीर्तन रामायण समाज की श्रीमती दीदी सोनी पलटू जी। आने वाले बृहस्पतिवार को आप एक बार फिर इंतजार करते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

एक बार फिर से आप सभी सुनालो को कहते हैं खुद मोरख वेलकम तुरख। खास कथा मिलकर के हम लोगों ने सुने दीदी सोनी पलटू जी के जरिए, और चलिए यहाँ से भजन यात्रा कार्यक्रम की ओर हम आप सबको लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं। और हर रोज की तरह आज भी शुरुआत करते हैं हम देन हाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से। ये सुंदर सा दुर्गा माता मंत्र मिलकर के सुनते हैं, साथ ही साथ प्रार्थना है माता रानी की कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बने रहे। ये माता रानी मंत्र मिलकर के

अति सुंदर माता रानी मंत्र, मतलब कि दुर्गा माता मंत्र मिलकर के हम लोगों ने सुना आज की सुबह में, प्रस्तुत की गई है दनहाक से मंदिर सेवा धाम की ओर से। आप सभी के नाम हमने पेश किया। अब की बार मिलकर के सुनते हैं अगला भजन और प्रस्तुत होते हैं दनहाक से श्री राम मंदिर और साथ में सोनार हाउस सर्विस की ओर से ये भजन पेश होते हैं। साथ ही साथ शुभ दिन शुभकामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन मिल करके सुनते हैं।

डेन हाग से श्री राम मंदिर और साथ में सोनार खाउस सर्फस की ओर से आप सभी के नाम ये सुंदर सा भजन लाया गया है आज की सुबह के कार्यक्रम में। रोतदाम श्री कादा 9926 से औदरिय धाम टेम्पल की ओर से आप सभी के नाम ये भजन मिल करके सुनते हैं, ये भजन प्रस्तुत होते हैं। साथ साथ आज का ये दिन आप सभी के लिए शुभ हो, ये भजन पेश होते हैं।

सुंदर सा भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने, प्रस्तुत की गई है रोतदम की काद 99 से औदरिय धाम टेम्पल की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किया। फ्लावर दिंग से श्री नंदा देवी मंदिर आनंद जी महाराज जी की तरफ से आप सभी के नाम ये माता चालीसा, ये दुर्गा माता चालीसा मिलकर के सुनते हैं। साथ साथ प्रार्थना है माँ की कृपा आप सभी सुनने वालों को प्राप्त हो। ये माता चालीसा मिलकर के सुनते हैं आज की गुरुवार के सुबह के कार्यक्रम में।

सुंदर सा माता चालीसा मिलकर के हम लोगों ने सुने, प्रस्तुत की है फ्लावर दिंगा से श्री नंदा देवी मंदिर की तरफ से आप सभी भक्त प्राणों के नाम हमने पेश किया। दनहाग से देव मंदिर हेडबस्तीर और साथ में आला फ्राइवेला हर्ष की तरफ से आज की सुबह के कार्यक्रम में ये सुंदर सा शिव जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ प्रभु की कृपा आप सब पर हो, ये शिव जी के भजन मिलकर के सुनते हैं।

सुंदर सा भजन पेश हुआ है दनहाग से देव मंदिर हैद बस्तीर और साथ में आलफ राय विलहर्स की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किया। चलते हैं आपको लेकर अगला भजन की ओर और अब की बार भजन पेश होते हैं दनहाग से परिवार देव मंगल और साथ में दनहाग से संध्या रायसन का मालिक डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉय को सुखाई की तरफ से आप सभी के नाम ये शिव जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ शुभ दिन प्रस्तुत किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सुंदर सा शिव जी के भजन आप सभी के लिए लाया जा रहा है आज की सुबह के कार्यक्रम में।

दनहाग से परिवार देवमंगल और साथ में दनहाग से संध्या रईसन का मालिक डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉय को सुखाई की तरफ से आप सभी के नाम ये सुंदर सा भजन लाया गया है आज की सुबह के कार्यक्रम में। संस्था अपना और साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है और साथ ही साथ संस्था सत्य धर्म होपफुली से आप सभी के नाम एक बार फिर ये शिव जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ ही साथ सभी श्रोताओं को मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन मिल करके सुनते हैं।

सुंदर सा शिव जी के भजन लाया गया है, संस्था अपना और साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है और साथ साथ संस्था सत्य धर्म होपफुली से आप सभी के नाम हमने पेश किए। अब की बार भजन लाया जा रहा है नाम शोन सिख्तिंग हिंदू अंडरवाइज नीदरलैंड एंड द फाइव आंखसलोतन स्कूलन। अमस्टरडाम से श्री लक्ष्मी स्कूल, अलमेरा से श्री गणेश स्कूल, उत्तराखंड से श्री कृष्ण स्कूल, डेनहाग से श्री विष्णु स्कूल और रोटरडाम से श्री सरस्वती स्कूल के ओर से आप सभी के नाम ये सरस्वती माता भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ प्रभु की कृपा आप सब पर हो, ये सरस्वती माता भजन मिलकर के सुनते हैं।

पवित्र बनाओ, मेरी वाणी में मधुरता भर दो माँ, मेरे मन के हर अंधकार को ज्ञान के दीप से आलोकित कर दो माँ। मेरे छोटे हाथों से जो भी लिखूं उसमें आपका आशीष बस जाए, मेरे हर प्रश्न का उत्तर आप बनो, मेरी हर भूल को

नामंस सेफ बेफे परिवार भारत सिंह की ओर से ये सुंदर सा प्यारा सा शिव जी के मंत्र मिलकर के हम लोगों ने सुने आज की गुरुवार के सुबह के कार्यक्रम में। नामंस एस बेफे इलेक्ट्रो टेक्निक द हेयर एंड मफराओ पेम एंड योलांदा कुंज बिहारी, साथ में चार लड़कन रिकार्डो मिशाओ जूवी और डेमियन की तरफ से आज की सुबह में ये सुंदर सा भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ आप लोगों के इष्ट देव आप सब पर कृपा बनाए रहे ये शिव जी के भजन मिल करके सुनते हैं।

सुंदर सा प्यारा सा शिवजी के भजन लाए गए हैं नाम एस बेफे इलेक्ट्रो टेक्निक द हेयर एंड मफराव पिम एंड योलांदा कुंज बिहारी साथ में चार लड़कन रिकार्डो मिशेल जुवी और डेमियन की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किया। रोटरडम साइड से माता श्री धर्मदेव शिवपाल बालगोबिन और सभी लड़कन की तरफ से एक बार फिर ये शिवजी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ सभी श्रोताओं को मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये शिवजी के भजन पेश होते हैं।

रोहतास शहर से माता श्री धर्मदी शिवपाल बालगोबिंद और सभी लड़कन की तरफ से ये सुंदर सा भजन लाया गया है आज की बृहस्पतिवार के सुबह के कार्यक्रम में। अब की बार भजन लाया जा रहा है होकफ्लिट से, नामंस माँ इरेना लक्ष्मण, साथ में बेटा अश्विन लक्ष्मण की तरफ से ये सुंदर सा शिवजी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ ही साथ मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये शिवजी के भजन आप सभी भक्त प्राणियों के नाम लाया जा रहा है आज की सुबह में।

सुंदर सा शिव जी के भजन पेश हुआ है होपफुली से नामस माँ इरीना लक्ष्मण, साथ में बेटा अश्विन लक्ष्मण की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किए। दख बसेदें सफोरा रोतदम होपफुली आफलिंग 237 पर जो कि लाया गया है, और साथ ही साथ रोतदम ऑफिस की अफसोख नंबर 59 यहाँ के डायरेक्टरी से जो है मफराव आशा भगू की तरफ से आप सभी के नाम ये भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ शुभ दिन शुभकामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन पेश होते हैं आज की सुबह के कार्यक्रम में।

Dag beste ding Sephora Rotterdam hoofdlid afling 237 bij Jockey Leijgeje. Or Satisaat Rotterdam Overski Absweg nummer 59. Jaki directrice, Johe, mevrouw Asha Bhakuke Trafse, Absabike naam Hamde Peeschke. Abki baar bhajan Laya Jarahe. विशेष करके सुतमेर से माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा साथ में सभी बेटा बेटी दामाद बहू क्लैन केंद्रन और अख्तर क्लैन केंद्रन की ओर से आज की सुबह में ये राम जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ प्रार्थना है राम जी के कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बने रहे। ये राम जी के भजन मिल करके सुनते हैं।

सुंदर सा राम जी के भजन पेशवा है आज की सुबह में, विशेष करके सुतमेयर से माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा, साथ में सभी बेटा बेटी दामाद बहू कल्याण केंद्रन और अख्तर कल्याण केंद्रन की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किया। अब की बार मिलकर के सुनते हैं एक माता भजन और प्रस्तुत होते हैं नामस आनंद अर्जुन शर्मा और साथ में सुंदर बेफी की तरफ से। ये माता भजन मिलकर के सुनते हैं, साथ साथ माँ की कृपा आप सभी सुनने वाले को प्राप्त हो। ये माता जी के भजन मिलकर के सुनते हैं।

अति सुंदर माता जी के भजन लाए गए हैं नाम आनंद अर्जुन शर्मा और साथ में सुंदा बेफी की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किए। चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर आज की सुबह के कार्यक्रम में एक अंतिम भजन की ओर और भजन प्रस्तुत होते हैं विशेष करके नीदरलैंड और सूरीनाम। अमर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गुगार जी, पत्नी आशा गुगार जी, लड़के सोनाता और राजा की तरफ से ये शिव जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ शुभ दिन प्रस्तुत किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हुए सुंदर सा शिव जी के भजन सभी के लिए लाया जा रहा है आज की गुरुवार के सुबह के कार्य।

सुंदर सा शिव जी के भजन लाया गया है, विशेष करके नीदरलैंड और सूरीनाम। अमर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गोगार जी, पत्नी आशा गोगार जी, लड़के सुनाता और राजा की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किए हैं आज की बृहस्पतिवार के सुबह के कार्यक्रम में। चलिए यहाँ से होगा रिक्लामा ब्रेक, और रिक्लामा ब्रेक के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं, तो प्रोग्राम हम आगे जारी।

आजा रे प्यार पुकारे मानिवर लता जी की आवाज में आप सभी संगीत प्रेमियों के नाम हमने पेश की है आज की बृहस्पतिवार के सुबह के कार्यक्रम में। सुनो आज है दोंदरदाग सिर्फ मई 2020 और सुबह के प्रोग्राम से आप सब जुड़े हुए हैं और 9 बजे तक कुछ पुराने गाने आप सभी के नाम हम पेश करेंगे। तो चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गाना की ओर। आज की सुबह में मिलकर सुने गुने और गुनगुनाइए।

फिल्म का नाम है तीन देवियन। गाने वाला किशोरदा की आवाज में, किशोरदा और कोरस की आवाज में आज के प्रोग्राम में हमने पेश किया आप सबका मनचाहा रेडियो स्टेशन अमर एफएम पे। आप सब चून किए हुए और अभी 10 बजे से स्ट्रास फनाफ तीन यूर इस कंटोर फॉर यू ओपन एंड फनाफ तीन यूर क्यूटी बैलन फॉर आल इन्फो ऑफ 03-244-0929 पर। चलिए कुछ और पुराने गाने आज के प्रोग्राम में मैंने चुन कर रखे हुए हैं, जो चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गाना की ओर, मिल करके सुनते हैं ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए।

फिल्म का नाम है राजकुमार और गाने वाली मान्यवर लता जी की आवाज में आप सभी संगीत प्रेमियों के नाम हमने पेश की है आज की बृहस्पतिवार के सुबह के कार्यक्रम में।

फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। महेंद्रा कपूर जी की आवाज में हमने पेश की है आज की सुबह के कार्यक्रम में। अमर एफएम है जनता की आवाज और आप सबका मनचाहा रेडियो स्टेशन पे आप सब चुन किए हुए हैं और कुछ और गाने मैंने चुन कर रखे हुए हैं। और अभी 9 बजे होगा रिक्लामा और रिक्लामा के बाद कुछ और मिले जुले गीत आप सभी के नाम हम पेश करेंगे। तो चलते हैं अगला सिलेक्शन की ओर। आप सभी म्यूजिक लवर्स के नाम पेश होते हैं आज के प्रोग्राम में।

मेरा चांद मुझे आया है नजर, फिल्म का नाम मिस्टर आशिकी से मैंने निकाल कर आप सभी के नाम पेश किए। गाने वाला द टाइगर ऑफ बॉलीवुड शानू जी की आवाज में आप सभी म्यूजिक लवर्स के नाम हमने पेश किए हैं आज की गुरुवार के सुबह के प्रोग्राम में।

चलिए अब की बार हम शामिल करते हैं कविता कृष्णमूर्ति जी को और साथ में है सिर्फ कविता कृष्णमूर्ति और फिल्म का नाम है प्यार का सौदागर। हाँ हाँ, फिल्म का नाम है प्यार का सौदागर और ये खूबसूरत सा बयान आप सभी के नाम लाया जा रहा है आज की सुबह के प्रोग्राम में।

और ये रही आज की प्रोग्राम में साधना सरगम और साथ में सुदेश वतकर की आवाज में आप सभी के नाम हमने पेश किए है ओफर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए।

अच्छा तो चलते हैं बढ़ते हाल सबको लेकर एक गीत की ओर, और गाना के बाद में, हाँ ये गीत के बाद में चलेगा रिक्लामा ब्रेक, और रिक्लामा के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं, ये मेरा वादा है।

जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। अच्छा, बिल्कुल सही है, शानू जी ने मीठी आवाज में आप सबको सुनाए ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए। एंड विद अस ओक तीनर खवेस्ट, इसका मतलब ये है कि कंटोर इज फुली ओपनड। फॉर ऑल इन्फो कुंट यू बेलन ऑफ 010-244-0929 पर। अमर एफएम के प्रोग्राम है एक प्रोग्राम जो लाइव पेज होते हैं स्पर्त पारक औस्त 1315 अमर एफएम का पता है। मैं हूं आपका सेवक विजय सरफी और आज की सुबह में हम रहेंगे आप लोगों के साथ करीबन 12 बजे तक, मतलब कि तत् अनहत रिक्लामा ब्लॉक फान 12 यू। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला सिलेक्शन की ओर। आज की सुबह में पेश करते हैं आप सभी और सभी संगीत प्रेमियों के नाम, मिलकर सुने गुने और गुनगुनाइए।

चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो ना। शानू जी और साथ में आशा जी की आवाज में आप सभी के नाम हमने पेश किए। फिल्म का नाम है सलामी। चलिए इसी फिल्म का एक और गीत है मेरे पास हमारा प्लेयर पे। गाने वाला शानू जी है और साथ में अलका याग्निक जी मिल करके सुनते हैं आज के प्रोग्राम में। हम पेश करते हैं आप सभी और सभी सुनने वालों के नाम ओफर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए।

प्रोग्राम हम और आगे जारी करते हैं और चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम शामिल करते हैं उदित नारायण जी को, साथ में है कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म का नाम है राजा बाबू। इसी फिल्म का ये गीत मैंने निकाल करके आप सभी के नाम पेश करने को जा रहे हैं, मिल करके सुनते हैं।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बस अच्छा लगा ना। यही हम आशा करते हैं कि सुनकर आपको पसंद आया हुआ होगा। चलिए, जैसे मैंने वादा किया कि कुछ रिमेक्स गाने होगा इस घंटे में, मतलब अब से लेकर करीबन 12 बजे तक, तो चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला सॉन्ग की ओर। आज के प्रोग्राम में आप सभी के नाम लाया जा रहा है।

आप सबका मन चाहा रेडियो स्टेशन है अमर एफएम, जनता की आवाज, आप ही की आवाज। और कुछ रिमिक्स गाने आप सभी के नाम हम पेश करते हैं, तो क्यों ना ये भी हो जाए आज के प्रोग्राम में।

अच्छा, घड़ी की तरफ देखा जाए तो एक दो गाने और होगा, उसके बाद हम आप लोग से आज्ञा मांग करेंगे। अभी नहीं, एक दो गाने के बाद। तो चलिए अगला गाना की ओर हम आप सबको लेके बढ़ते हैं, जबकि है आज डोंडरदाग स्वीफा मई 2026 और सुबह के प्रोग्राम से आप सब जुड़े हुए हैं और कुछ रिमिक्स गाने आप सभी के नाम हम पेश करते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गाना की ओर आज की सुबह में, मिल करके सुनते हैं।

Zullen we aan de donderdag 7 mei 2026? सुबह के कार्यक्रम हमने पेश किए करीबन 4 बजे से लेकर अब तक. यही आशा करते हैं कि हमारा हिस्सा का कार्यक्रम जो आज हमने पेश किए है, प्रस्तुत किए है, सुनकर आप सब पसंद किए. बाकी के जो प्रोग्राम है सुनते जाना हमारा बाकी को लेखा के जरिए. हम मिलेंगे आप लोगों से कब और कितने बजे, बस अमर एफएम के प्रोग्राम बेशक सुनते रहना. आज के लिए, सुनने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार. Ram Ram, Salam, Sasrikal, Goedemorgen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En voor straks veel luisterplezier met de overige collega's. Vijay Asarfi, programma Kopeeskia.

ही देता वही लेता उसी का है संसार। एक आता और एक जाता ये जग का है व्यवहार। मृत्यु समाचार अमोर एफएम नई दलाव से सुनने वालों सुनने के लिए ध्यान दीजिए गौर फरमाइए। चार परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार पढ़ा जाएगा। मानदा 4 मई की रात में क्वार्ट ओवर नेख नेखरन 5 तक वर्ष की आयु में स्पाइक निशा का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी की मृत्यु हो गई है। मानदा 4 मई की रात में शासन तख्त वर्ष की आयु में रोटरडैम साउथ के रहने वाली माता श्री मींच लोविसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। वूसदाग 6 मई की सवेरे में नीघन 7 तक वर्ष की आयु में रोटरडैम होपफ्लीट का रहने वाला पिता श्री ईश्वर प्रसाद शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई है। और मानदा 4 मई 6 तक वर्ष की आयु में दनहा के रहने वाली डॉक्टर आंदुस आयरिश कल्लू की मृत्यु हो गई है।

स्पाइक एनएसएस से समस्त परिवार ओरी कुंच बिहारी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। मांदा फिर मई की रात में क्वार्टोवर नेख नेखनन फाइव तक 59 वर्ष की आयु में माता धर्मवती ओरी बंसी और स्वर्ग पिता शिव ओरी का बेटा, पत्नी श्रीमती सुनीता ओरी कुंच बिहारी का पति, दो बेटा अविनाश कुमार और स्टीफन जयंत कुमार का पिता, पांच भाई और दो बहन सुरेश राजेश सरवन शर्मिला रणधीर मनोज और गायत्री ओरी का भाई, पांच छुटकी का बड़कू एक बहनोई का सार, 19 लड़कों का दादा मामा आजा और नाना। स्पाइकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, श्रीमान श्याम कुमार ओरी जिन्हें लोग ज्यादा सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम द ओमरिंग स्पाइकनेस अप्रैल सवैख नंबर 3 पर आज डोनरदाग 7 मई साफंस फ्रॉम 6 टॉट 7 यूर अर्थी कल फ्राइडाग 8 मई के दिन में तुसे 1:30 एंड 3 यूर स्पाइकनेस अप्रैल सवैख 3 क्रेमेटोरियम द ओमरिंग में दाह क्रिया की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन 06-45-46-1192. दूसरा परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार। धनहाक से समस्त परिवार नोहर बालादिन और विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं। मांदा फिर मई की रात में 86 वर्ष की आयु में भाई हेंद्रक नोहर और स्वर्गीय बहन छीन नोहर की बहन, 10 लड़के मिंचे बालादिन और परिवार, सोनिया बालादिन और परिवार, आशा बालादिन और परिवार, जॉन बालादिन और परिवार, ग्लेन बालादिन और परिवार, रेमी बालादिन और परिवार, सिल्विया बालादिन और परिवार, ग्लैडिस विदेशी और परिवार, स्वर्गीय दो बेटा आंद्रे और रोनाल्ड बालादिन की मौसी रोटरडाम साउथ की रहने वाली माता श्री मिंचे लुविसा नोहर स्टाकल, माता श्री मिंचे लुविसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। अंतिम क्रिया कब और कहां पर की जाएगी अभी निश्चय नहीं है। तीसरा परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार। होपफुली से सभी परिवार शिव प्रसाद शोक के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वोसदाग 6 मई की सवेरे में नेखन 79 वर्ष की आयु में जेन जॉयस आन जेरी और सास्किया शिव प्रसाद का पिता, हारोल्ड संजय योसेफिन और दानियल का ससुर, फारिशा अनिशा जेफरी राइनेश आरियाना और अभिषय का नाना, एंथनी और नताशा का आजा, रायन और ईशानु का परनाना, रोटरडाम होगफ्लीट का रहने वाला पिता श्री ईश्वर प्रसाद शिव प्रसाद, पिता श्री ईश्वर प्रसाद शिव प्रसाद जिन्हें लोग ज्यादा टक्का और सीमोन के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम डेला द बुसम रोटरडाम बुसम सिंगल 5 तक पर सैटरडे 9 मई overdag van 1 tot 2 uur en maandag 11 mei 's middags van 5:30 tot 6:30 artie dinsdag 12 mei ke din mein 12 baje Heine Noord zijn viool nummer 3 crematorium Hoeksewaard mein dah kriya ki jayegi। बैठक नहीं है शेन बैठक अनहर्ष। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन 06-44-15-57-30 आखिरी परिवार रिश्तेदार की आखिरी मृत्यु समाचार। धनहाक से समस्त परिवार कल्लू और सभी परिवार इस दोरन बहुत दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं। मांदा 4 मई को 66 वर्ष की आयु में पति यानी इस दोरन की पत्नी
फेमके और बारंत की माँ, दमाद मक्स की सास, पिता श्री लौता कल्लू और स्वर्गीय माँ शोर्स कल्लू पूरन की बेटी निर्मला, सीता, शांता, त्रिश, श्याम, कृष्णा और सावित्री कल्लू की बहन, तीन बहनोई की साली, एक छुटकू की बड़की, दो भाऊजी की ननद, सभी लड़कों की मौसी, फुआ, आजी और नानी, सभी दमाद और बहू की मौसियां और फुआ सास, दनहा की रहने वाली डॉक्टर रामदस आयरिश कल्लू। डॉक्टर रामदस आयरिश कल्लू की मृत्यु हो गई है, जो हत हाक्स ऑंदरवाइस में कॉमिशी फॉर डेस्कुंडेट में वैरकसाम थी और हाक लंदन स्पेशल फोर्सेट ऑंदरवाइस की डोसेंट थी। खेन रॉ बसुक अर्थी मानदाग 11 मई शाम में तुसे 4:30 देन हाग वैन डालर सिंगल नंबर 1 क्रेमेटोरियम हाकसे दुइनन में दाह क्रिया की जाएगी। खेन ब्लूमे एन खेन बैठक आन हुज फ्लोरग कैजुअल क्लीडिंग आंतरक, ये परिवार की ओर से निवेदन है, गुजारिश है। इस मित्र परिवार रिश्तेदार को ये खबर की जा रही है, सुनने वालों से निवेदन है, अनुरोध है कि इन तमाम खबरों को और आगे तक पहुंचा दें। रेडियो अमोर इन समस्त परिवारों को शोक सहानुभूति प्रकट कर रही है। रेडियो अमोर इन समस्त रिश्तेदारों की गमी में शरीक है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, आना और जाना इस मृत्यु लोग की रीत है। सुनने वालों, इस तरह अमोर FM नई दलाओं से आप सुन रहे थे मृत्यु समाचार।

The power of love. Amor. FM.

बेस्ट बहन बहनों, इंडिया भारत देश से वो सिंगर आ रहा है जो हजारों लाखों की दिलों में बसा है, हजारों लाखों की दिलों पर राज करता है, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल सोंदक 24 मई आहोय इन रोटरडम। जुबिन नौटियाल लाइव।

अजय धी सिंह की आवाज में सिनेवलु अमोर एफएम है। करीब 14 मिनट बाकी रहा इस वक्त एक बजने में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अनौर्स साथी राम नथी भी आपका साथ देने वाला है। सुनते रहिए, फॉलो करते रहिए अमोर एफएम के कार्यक्रम। दोनों दाख है सेफ में है।

0: Aziz and Sharashana.
1: News.

0: संगीत और संगीत के दुनिया के दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार अदाब। मीठी मीठी आज गुरुवार, आज बीफे मई के 7 तारीख सन 2026। ये दोपहर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। द पावर ऑफ लव आ मोर एफएम, द बेस्ट म्यूजिक ऑन द बेस्ट स्टेशन। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक जिंदगी में? आज दिल से दुआ देने का मन है तुझे, तू हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी तुझे छू ना पाए, कोई तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आए, और ये होंठ तुम्हारे हमेशा मुस्कुराते रहे। मौसम सुहाना है, मौसम रंगीन है, तो आज ये दोपहर बीते हुए कल से बेहतर हो। यू आर मोस्ट वेलकम, रियली। आप आए तो बाहर आए,
1: बैठे रहे साथ यूं ही।
0: और आज का ये शाम, न इससे पहले न इसके बाद, आपके साथ एक रंगीन शाम बिताएंगे। कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। आज भी अमोर एफएम का कांतोर खुला है, हर एक इन्फो, हर एक मालूमात के लिए आप कांतोर पर संपर्क करें, 03244-09-29। और हमारे तमाम ऐपर्स आज भी हमारे साथ हैं, तो मैंने कहा ना कि आपके साथ हम एक रंगीन शाम बिताएंगे। मौसम से क्या शिकायत हम करें, प्रख्तक मोई वेर सोनख
1: चुने जाते हुए,
0: फरियरन टेम्परेचर फन 16-17-18 ग्राडन, तो जो आज है उसमें हम मिल बांट ले और मौज मस्ती कर ले।

साथियों आज आए हैं तो मैंने कहा बहुत सारा प्यार लेके आए हैं और कुछ अपना सुनाएंगे कुछ आपका सुनेंगे क्योंकि आपसे सुनने को बेताब हैं। आप क्या हमें बताएंगे और आप कैसे हैं ये जरूर बताना क्योंकि ये रेडियो भी आपका है, हम तो बस यहाँ पर आपका खादिम हूँ। मौसम के ऊपर ये गीत आधारित है, ठहरो तो सही। पद्मश्री सोनू निगम बीफे के दोपहर में

0: ठहरो तो सही, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। और मौसम जब सुहाना है, मौसम रंगीन है, साथियों आप हमारे करीब हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा लगा कि आप लोग आज हमारे करीब होकर और ये प्रोग्राम से वाकिफ है। 20 मिनट ओवर 8 और आज हम आपको ले चले हमारे साथ, हमारे एपर्स हैं और देखते काफ़ी लोग जो ऐप किए हुए हैं और ऐप करने वाले जो करीब सुबह से हमारे कुलिक के पास ऐप किए हैं, उन तमाम को भी हम जेन तिरबेनी आइंथोफन में प्रोग्राम सुनते हैं, तो मैंने जेन तिरबेनी आपको भी हम याद करते हैं। और लक्ष्मण एंड लक्ष्मी सही फनिंगन पर हैं, प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो आपको भी हम बहुत बहुत प्यार बताते हैं। और हमारे एपर्स हमारे साथ होते हैं, ऐशा कल्पनाथ दनहाक में हैं। ऐशा आपको भी हम याद करते हैं क्योंकि आप हमारे हमेशा साथ रहते हैं। सीला कन्हाई दनहाक में हैं, प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो सीला कन्हाई आपको भी बहुत बहुत प्यार हम बताते हुए आज ये कार्यक्रम आपके सेवा में पेश करते हैं। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, लाजवाब गीत आपके लिए।
1: लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो,
0: और कहते हैं वो लड़की नहीं है वो जादू है। खुई मिदाख मैंने कांति कुमार, कैसे हैं? अरे जब तू हिले तो हम कैसे ना रहे।
2: अरे बड़का भाई तो हिले ना।
0: मैंने कांति कुमार कहा हो आज ना? अच्छा, और दनहाक में कैसे, सब ठीक ठाक है? इधर एकदम भरपूर घाम निकल है, रोहतरदाम में एकदम सब जगह पर कोई ऐसी कुर्सी लाई के बहरे बैठा लाई, कोई आधा यानी कि शाकपांस में है। ना तो ना, जब यही पर है अब कौन काम इतना महंगा टिकट भर के सन्नाम जाएंगे। तो कैसे विचार का हुई आज? ओके, अच्छा हाँ, संजय अबे थोड़ा फुरकू है, तो लहसुन मर्चा प्याज वा सब चाहिए कटाई के।
2: वही तो भैया
0: बोल,
2: कई बजे छाओ?
0: 5 बजे तो,
2: ओ 5 बजे, ओ मोरे,
0: हाँ 5 बजे हम लोग सब गर्मावे तो बिगिन कर दे गर्मावे क्या। हाँ रिखल है, मैंने कांति कुमार भोली सी सूरत आंखों में मस्ती के कर करती के कर खरतीन हो ही सके है। मैंने यार कांति कुमार तो बहुत बम्बूल लोंडा बाटे रिखल है। अच्छा कम से कम दिल में तो याद कर ले क्या? माई बाप पहुँचाई कर लगे। अच्छा कम से कम तू अपन काम कर दे ले है। रेखल है कांति कुमार,
2: अच्छा भाई
0: रेखल है, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती।
1: लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या।
0: मैं कांति कुमार बोले ओ सुनत हुई बर कहां पर है पर संदेश दे दिल को ये मेरा कहां पर है
3: उड़
0: मेरा या मैं है पे। ओ विजय कैसे बाटे है?
3: मोई मोई मोई कैसे तू
0: विजय, कैसे है आमस्टरडम में?
3: बहुत जबर काम
0: ना। ठंडा ठंडा निबुआ के पानी वानी पिए के?
3: हाँ वही पानी बैठ के ले ली ने एक बोतल पी ला।
0: अच्छा अच्छा, तब मोई विचार है। तो का हो आज कौन सी बनी बनी
3: आप देखी बनावे देखी बोना दिन देखी
0: ओके okay, okay.
3: दोपहर से दाल थोड़ा से
0: अच्छा फीका खाना बनी आज?
3: ना ना सार्दिन बना देता
0: हूँ। ओ कौन आ, आ, तोमाती सार्दिन?
3: मोर जॉन।
0: रिकल पुराना बहुत पुराना खाई के ही पहले कुछ ना रहा था बल जाई ब्लैक काट के बल जा हलिये से किन लाओ तो दुकान से
3: यस तो हेलो
0: हाँ
3: और वही सब
0: तोर भाईवन भी सुने हैं आनंद तो प्रेम रिकल भाई भी जाई मोई से रही है तोर आवाज सुन लेवल गई है और खूब तीता तीता सात दिन बनाई है होली सी सूरत आंखों में मस्ती या दोस्तों भाई बहनों आज ये प्रोग्राम में चले गीत आपको सुनाते हैं

0: साथियों प्रोग्राम में गीत आप सुनी और ये गीत आपके लिए पेश की गई। साथियों देखते तार लगातार आते हैं, आपको मौका देते हैं। और सुरीनाम में भी भाई नवीन लक्ष्मण हमारा कुलिक सुरीनाम में प्रोग्राम सुनते हैं। इमाखवेर इन बेलन एन इन बेल नंबर इस 03244725 0 एन एक्सी एन टेलीफोन बेनको इन हुई मिदा।
1: राम राम भाई।
0: मफरा हिस्सा कैसे हैं?
1: अच्छा बाकी भाई।
0: का हो ए दनहाख में?
1: कुछ ना बैठा बाकी, अबे संजा का एक एक जा बिकर
0: है। ऐ ते ऐ ते ये बाप रे।
1: आपको फ्री में संग।
0: ओके ओके। देख ऐसे ऐसे फ्रेंड रहे तो फ्रेंड संगे जाओ। और कौन खाना खवाई आज?
1: नासी नासी मत मुख से मिटी।
0: नासी मत मुख तो चिनुआ के रेस्टोरेंट में जाइयो।
1: हाँ हाँ जी।
0: ओके।
1: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ। या। नौ दनहखवे में जाइयो खाए तम।
1: हाँ दनहखवे वाह
0: या। या या। नौ शिनेश इस लेकर एन तो आज आज घरे चूल्हा ना बरी तम।
1: ना। कौन सा कितो?
0: या एक एक दफे अब जब मोई मोई फ्रेंड है तब फ्रेंड संगे चाहि जाय के खाई के।
1: हां या करो। हां नो कैसे आउट बाकी दिस फॉर दैट अभी आई ला तो पांच पांच फाइव सेस तक हो गए कोबरी।
0: ओ अच्छा अच्छा अच्छा मोई विचार है।
1: हां
0: भगवान आपके सहन शक्ति और ताकत दे ताकि आप 65 बरस के होइए। यही बरिस में होइए?
1: हां नहीं
0: को बरिस एक को बरिस। अच्छा
1: आपके तो फिर सेस तक हो गए।
0: हाँ तो मोई से खाइए पिए कोई करो उस पापो पिए थोड़ा।
1: हाँ
0: सवेरे सवेरे एक एक एक एक कप कोई के जो उस पाप और एक अंडा।
1: हाँ
0: थोड़ा ताकत हुई तो
1: 10 बजे सूत के जगेला।
0: क्या बोलो?
1: 10 बजे सूत के जगेला।
0: वो 10 बजे सूत के जगे थोड़ा अच स्लाप करे है तब खाना पीना ऑन बैठ हुए है। ऑन बैठ करके तब फिर सोच चल जा कि 12 बजे 1 बजे लंच हुई और फिर संध्या के खाना गरम।
1: या महाभारत आते थे 12 बजे नहा लेला, 12 बजे खा लेला ब्रेड दवाई वाई पी लेला और तब फिर संध्या 4 बजे भी ब्रेड खा लेला तब आपके सही कर रहे तब बार बैठा।
0: ओके ओके ओके। नौ बहुत उमदा विचार है। और तो देखिए इसे नाना प्रकार के फीरस उरस आदमी के पकड़े है अभी। हंता फीरस देख कितना लोग के परेशान करील है। बड़ी सोच समझ के और बड़ी विचार से आजकल कहीं जाई के पड़े है। और मायलक फाल आप जाइए अभी तय तक करे तो मोहिश रहिए। और आप इसे सरनाम में भी ये तो कैसे सुने जितना तो सखी सहेली है सब तो कैसे नाम में सुने हैं
1: आप दानीला बोले सबन भी
0: तो लास्ट गए रहे तो ढेर फ्रेंडन तो कैसे नाम में हुई है।
1: हाँ हाँ भाई अकलो। मेरे साथ जाए लाख भाजी हैं अपन मामी सास लगे लोशन करी ला और एक बच्चा वहीं है बाप बच्चे बारी पाला नंबर।
0: ओके ओके ओके ओके।
1: या
0: मगर हिस्सा यहाँ की मोई से यही है मुँह खूब थोड़ा लिपस्टिक लगा लिए पुदल लगा लिए तब जाइए रेस्टोरेंट में जब कुक शॉप में बैठिए तो आदमी बोली वाह वाह ये हिस्सा यहाँ की है। अच्छा
1: अच्छा भाई अच्छा रामना।
0: अच्छा मोई से रहिए। ओके थैंक यू। दोस्तों भाई बहनों मुफरा हिस्सा यहाँ की आज प्रोग्राम सुन रहे हैं। और कहते हैं शाम को जाई आज संध्या के जाई बोले ऐत ऐत करे। तो दोस्तों भाई बहनों हम आपको ले चले और एक तार के इंतजार में और हूँ। एक तार और आ जाए तो गाना भरपूर गाना कुछ अलहदा है कुछ कुछ गाना जो आपके लिए मैंने निकाले हैं। और ये गाना लता मंगेशकर और कुमार सानू दोनों मिल के गाए हैं। तो आज ये प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे। मफरा हिस्सा यांकी प्रोग्राम सुन रहे हैं और मफरा हिस्सा यांकी के साथ में और किसका नाम जोड़ा जाए तो 3:02 ये कार्यक्रम आपके लिए पेश है। और देखते हैं हमारे ऐप पर भी कुछ लोग जो है तो प्रोग्राम बहुत सारे ऐप आए हैं और ऐप करने वाले कौन कौन होते हैं देखते हैं। हाँ सन्नाम में लोग बड़ी प्यार के साथ में अभी तो सन्नाम में सबेरे हैं वहाँ पर हलफ नेहन है। भैया जैन नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
0: भैया जैन कैसे हैं सब ठीक ठाक है?
2: सब ठीक ठाक है।
0: अच्छा अच्छा हम देखिए ला अब मने भाई जैन के आवाज सुन के तो हॉलैंड में भी लोग तैयार हो गए और देखल जाए कि कौन है खुईदा अच्छा ई तरवा चल गए है मार भाई जैन कैसे है सर नाम में
2: नाम वही भाई सर
0: कई बजे दुकान खोलने सवेरे
2: सर 6 बजे
0: अच्छा अच्छा और भीड़ भड़क्का सारे 6 बजे से हो जा है
2: बड़े
0: अच्छा अच्छा हमने के भैया मानी आई के बोले बड़ी तारीफ करील बोले जाऊ रकम से तू ब्रेड बनावे है बोले तोर ब्रेड बोले बोले वाह वाह बोले उमा स्वाद भी है और जो स्टाइल से बोले तू बनावे है बोले उकर बोले बोले ही मन करके फिर प्लेन पकड़ के चलाई अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो भाई नवीन लक्ष्मण भी तो और तारीफ बहुत करे है
2: ओ हाँ हाँ एकदम या वो तो इधर
0: है तो आपके संग साथी लोग
2: हम बोले खाली आप ना आए पाए
0: ओ अच्छा अच्छा तो जैन कब विचार है थोड़ा इसी तौर संगति में सोचे है विचार करे बोले कैसे मन बोले
2: हैं अब वही नौतो कीने था
0: तो हम लोग के बता दिए कि देख देख अब लुतरेवा खुल गया है हाँ भैया देख हम लोग के भैया जौन है महेंद्र बार झार के हो कान लगाए के सुने बोले बोले बताए बोले लुतरेवा खुली तो बोले हम लोग आप खिलाए बोले बस्ता लाई के
2: अच्छा अच्छा
0: तो भैया जैन मोई से रहिए और अबे भरपूर दिन परल है
2: अब तनी अच्छा चिकी चिकी गुनिया पकड़े रहा
0: देख चिकन हमने एको प्रोग्राम बनाई ली दतरा बताई ले कि देख एको फक्सन निकल गए चिकन गुनिया के मर भाई जैन तो के पकड़े रहा कैसे कितना अब तलक प्रॉब्लम करे हैं
2: ना गली दता तन सब पाई ने दवाई
0: हाँ
2: तो तन वही हो गली बाटी में
0: अच्छा अच्छा अच्छा ईसाई नीदरलैंड में भी एको फक्सन निकल है मर बड़ी बड़ी महंगा है वो फक्सन मन भाई ने 200 यूरो
2: दवाइया
0: अच्छा मैं दवाइया हेल्प करी ले बाकी अच्छा मोई है कि दवाई मिल गई दवाई थोड़ा खबर करो और भाई जैन मोई से रहिए तोर आवाज हमने सुन ले लीन है तोर संग साथी जितना है और भैया लंबू भी सुने हैं
2: अच्छा
0: रही खेल भाई जैन हम गाना भरपूर सुनाई ला अच्छा
2: नमस्कार
0: साथियों आज ये प्रोग्राम में मैंने कहा सानुदा एंड द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर प्रोग्राम में है ओ जाना रियली यू आर माय जाना

दोस्तों भाई बहनों, आप सुने गीत लता मंगेशकर एंड कुमार सानू। तो आज ये प्रोग्राम में हम आपको चोरी चोरी ये दिल को चुरा लेंगे, ये मुझसे आपसे वादा है। और ओंसा अपुतई कर भाई अमर राम सुंदर सिंह इस ओकानत खनी थे फन अमोर एफएम तरवेल है राइट हैंस फ्री या इस राइट ऑलटाइम हैंस फ्री एंड है खनीत फन अमोर एफएम प्रख्तक मोई वेर एंड है गात रिक्टिंग आई देल पोस ओवर्स की। Dus bij Amar, rij rustig en geniet van Amor FM. Heel speciaal. Broeder Amar Ram Sundar Singh met Lots of Love.

धीरे बस ये दिल तुम्हारा चुराएंगे और तुझे अपना बनाएंगे, यही खूबी है प्यार में, कि प्यार में एक दूसरे के साथ हो और वो दिल को हम चुरा ले और हमेशा के लिए दिल में कैद कर ले। साथियों, आज ये प्रोग्राम 14 मिनट फॉर 2 और प्रोग्राम में एक गीत और हो जाए। हमारे एप्पर्स आज मसाल हमारे साथ है, एन हुई दख एखा ओंख फे तख्त किलोमीटर फिटसन।

भगवान बड़ी प्यार के साथ में सत्यम एंड सत्यम कहते हैं सत्यम इंस्पायर करने से एंड दैट इज मैंने गोविंद मित्रा सिंह बंदगी साहब बंदगी बंदगी साहब और आपको भी बहुत बहुत खुशियाँ पेश करते हैं भाई रॉबी दनहाक में है प्रोग्राम सुनते हैं। तो ये गीत के साथ में हम ब्रेक के ओर चलेंगे एंड प्रोग्राम में लता मंगेशकर एंड कुमार सानू मदहोश दिल की धड़कन। मौसम हसीन है मौसम रंगीन है

0: दोस्तों भाई बहनों आपको याद दिलाते हैं युबी नौटियाल 24 मई को लाइव रूबरू नुकसे फंतीन दाखन तखान, तो आप तैयार हो जाएं और युबी नौटियाल के फिल्म बर्बाद के वो सब गाने, हम नवा, ये सब गाने जो आपके लिए मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो स्पेशली आपके लिए आपको सुनाएंगे। आप अमोर एफएम के प्रोग्राम सुनते रहें। तो साथियों आप सबको आरटीएम स्टेज आहोई में ये प्रोग्राम होने को जा रहे हैं। साथियों आपको फिर से एक बार मौका देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव इन बेल करें और आप हमें बताएं कि कहां से प्रोग्राम आप सुनते हैं। फिलहाल चलिए आज ये प्रोग्राम में हम देखते हैं 03, जी हाँ 03-244-0255 पर आप हमें तार करें। और आज हमारे एपर्स हमारे साथ हैं और एप करने वाले कौन कौन हैं आपको जरा से बता दे।
1: जखुईदाख हेलो राम गुडेंदाग मेट आशना।
0: हाय आशना
1: uit Rotterdam Kralingen, hallo।
0: Ja आशना welkom welkom, hoe is het bij आशना?
1: Goed, lekker zonnig.
0: Het is inderdaad lekker zonnig. Het is niet te warm, niet te koud. Variëren van 15, 16, 17. Maar het is zonnig. Als je binnen zit, dan heb je een mooi gevoelige temperatuur.
1: Ja, ik heb lekker het raam opengezet. Mm-hmm. En dan zit ik lekker naar een woord te luisteren. En met een glaasje cola zero.
0: Nou, glaasje cola daarbij. Nou, dat hoort daarbij.
1: Ja, zeker.
0: En hoe gaat de dag verder uitzien, Ashna?
1: Ja, lekker rustig, want ik ben vanochtend heel vroeg wakker geworden. Want roken die moet dan om 7 uur beginnen met zijn werk. Mm-hmm. Dus die moet heel vroeg van huis, mm-hmm. van 7 tot 12 dan. Mm-hmm. En dan, ja, dan komt hij weer terug, want hij is kwaliteitsmedewerker toch in een winkel.
0: Ja, ja.
1: En dan moet
0: je zeker bij zijn om... Vooral als het spullen komt, dan moet je altijd...
1: Dat zijn de uitladers die jij bedoelt. Maar wat ik bedoel met kwaliteitsmedewerkers, dat zijn mensen die de winkel boenen, winkel dweilen en dat soort.
0: Oké.
1: Ja, dat doet hij, zeg maar.
0: Nou, in ieder geval dat hij elke dag paraat op zijn werk is, dat is mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. En
0: want je ziet tegenwoordig, moet overal netjes zijn. Zie je door al die virus, dan schrik je even, waar ga je?
1: Ja,
0: je durft niet eens in een vliegtuig te stappen.
1: Nee, deze mensen die zijn verplicht om hun handen om het uur te wassen. Met desinfectiemiddel. Dus roken, mijn man, die moet zijn handen om het uur wassen. Ja. En als er klanten komen, zeg liever dan gewoon hallo of dag. Maar je hand even niet uitreiken aan de klanten.
0: Oké.
1: Ja, dus zo gaan ze daar in die winkel om. En dan heb ik het over die blauwe winkel. En dan weet jij welke ik bedoel.
0: Ja.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nee, maar je moet ook thuis veiligheid van hygiënisch moet je altijd...
1: Ja, daarom. Ja, als hij
0: niet
1: daarom,
0: buiten, maar binnen huis moet je ook altijd...
1: Ja. Ja, weet je wat ik gebruik als als wij de boel aan het schoonmaken zijn, gebruik ik altijd Dettol in het water.
0: Ja, dat werd vroeger in Suriname heel veel gebruikt ook, hè?
1: Ja, in Nikeri vooral. Als er dan eentje aan het schoonmaken was, of je rook pinolie, of je rook Dettol.
0: Ja, en zelf bruggen en houten, vroeger hadden wij minder, maar op hout gingen we altijd boenen en scrubben, al die dingen.
1: Ja, met de rachelbol en zo, weet je dat? Ja, en dat was een hele leuke tijd.
0: Maar dan bleef ook dagen ruiken naar Dettol. Dat was echt puur Dettol.
1: Ja, en weet je, Raam? Je kan het hier bij de Blaakmarkt, kan je het bij die Pakistanen nog steeds kopen.
0: Oké.
1: Ja, en daar koop ik hem ook. En heerlijk, als dat huis zo ruikt, dan ruikt het gelijk naar die keer.
0: Tegenwoordig zijn heel veel namaakproducten. Je denkt dat je de echte hebt gekocht, maar het is sterk, is hij niet.
1: Nou,
0: er zijn heel veel namaak ook van de Desti ook.
1: Ja, maar... weet je, ik gebruik geen dust, ik gebruik in jaren al of Dettol of pijnolie. Dat is mij meegegeven in mijn bloed. Zeg maar, daar hebben mijn nani Aji, ieder heeft daar een huis mee schoongemaakt. Ja, dus dan ga je dat opzoeken. En ja, als dat er niet is, dan is er altijd nog Ajax of iets. En zo ja. Doe ik het. Ja, heet water gewoon. Alleen heet water en dan Dettol erin.
0: Ga je vandaag koken gewoon... of...
1: Nee, ik hoef vandaag niet te koken. Ik heb gisteren dus platte vleugeltjes gemaakt. In Suruwa. Hoe noemen ze dat? In ketchup. En daar snijbonen bij is lekker.
0: Ja, nee, absoluut. Een beetje jus erin en vleugels en snijbonen, goede combinatie.
1: Ja, zeker. En dan dat ga ik eten. En voor de rest luister ik even naar jou. Maar ik heb een vraagje. Mag je een eigen liedje kiezen of hoe zit dat?
0: Maar mag hoor.
1: Ja, ik wil het liedje van Mohammed Rafi horen. Zindagi tujum litera. Ik weet niet van welke film het is. Mm-hmm. Maar ik vind hem heel mooi. En ik wil hem voor jou bestemmen, want je was recent jarig.
0: En, ja, dankjewel. Dat was 29 april.
1: Ja, zeker. Met de koning. Met de koning bijna. Dus
0: Ashna,
1: ik wil jou
0: van je
1: heel veel gezondheid wensen. Hè?
0: Ja, nou dat hebben we allemaal nodig. Gezondheid is pre. Als je dat hebt, dan heb je alles. En de rest, dat is meegenomen.
1: Ja, zeker. En... daarom deze lied speciaal voor jou. En ik hoop te horen welke film het is.
0: Ja, ik zal zeker... Ik heb een nummer nu op de player. Die zal ik afspelen in Zindagi Jhumle Tu Zara.
1: Ja, die van Mohammed Rafi.
0: Oké. Ik ga straks na dit nummer, dan ga ik die afspelen.
1: Oké, dank u wel.
0: Oké, Ashna, hou je goed.
1: Dag,
0: en groetjes.
1: U ook, doei. Dag.
0: Dil galti kar baitha. Aur aaj Ashna luistert ook mee. En Ashna, dank je wel voor je mooie gesprek en mooie telefoon. Dat je altijd belt naar... Amor FM. Nou, dat doet ons goed. Een goede middag.
2: Bhaiya, Inderji. Namaskar, Ram Ram. Ohi Siv Gobind Siv Narayan hai Raisan Houtwala.
0: Achha, bhaiya Siv Gobind, aapke hem dandwa pranam karila.
2: Achha, bhaiya.
0: Raisan Hout mein kaise hai? Dhoop nikalal hai ki kaise hai?
2: Bahut badhiya weather hai. Tani se donkar hai. अबे खेते से आयला तो हम सुन ली आवाज तो हम बोली भैया इंदर से तो हम जरूर थोड़ा से बात करें।
0: अच्छा भैया इंदर भी सुने हैं, भैया राम से आप बतियाओ है।
2: ओ राम सा सॉरी जो न अबे देवी जी बात करी से हिलास तो हम एक चीज न खबराई करेला हमार घर
0: पहले भैया सिर गोविंद पहले दुकान में हम लोग जाते हैं तो हम लोग कीनल जाते रहा है डेटोल पर पहले आदमी लोग घर धोना भी खबराई करत रहा
2: हम चाहे कि झूठ बोली भैया हम लोग के तो मट्टी पर हम लोग सुतत रही पहले तो ओकरे बाद में जब पलंगा होंगा रहा था वो सब चीज तो हमें बाद में आयल है डेटोल ओटोल स्क्रापा करे के हम मखेंता पोल्डर के रहने वाला है और भैया जो डायरेक्टर है वो तो हम ठीक से जानी ला हमारे गांव के आदमी है वो
0: हाँ भैया थोड़ा बोला था कि भैया सिर गोविंद के कैसे हमने जानी भैया भैया सुभाष जी भी वही मखेंता
2: कुफरोल बैठक है वो हमारे फुफा के बगल में रहा था हम पैदल चल के हाना सुले से जाती खेते खेते धान लगा है पहले
0: तो मखेंता में भी वहाँ धान लगत रहा
2: ये भैया अब तो क्या हम बताएला हम 7.5 केती और 20 केती हम पुलुक कर ली बैल से
0: हाँ पहले हर और बैल से होता रहा
2: और जब हम हर चलावत रही तो हमने जानी कई किलोमीटर हमारे जो पिताजी रहा हमसे ना बोलत रहा बेटा तब हम 13 साल के रहे ना बोलत रहा कि वैसे तो हमारे दूसरे को बहन नाम है बराती अब ना बोला बोले लंडवा से बोल दिए कि हर चलाई तब पहले तो पहले बोले अबे पानी ठीक से ना पड़ सल रहा, तो बोले बियाड़ा बोल दे पुलु करिहर कूदे जैसे मेघा। बाकी हम तो
0: मार कैसे वो जमीन तो यानी सन्ना में मटिहारा जमीन है तो ओपा हर चलावे खरतीन तो बड़ी जबर जबर बुल बुल चाहतरा रहे के।
2: ए भैया वो बुल जब घींचत रहा तो जहाँ हम लोग के जंगल के खेत हमार बात की ना जब हर फंस जात रहा तब तो सोम्स कितने जोन खुट्ठा अरे जोन काटल जा पेड़वा कैसे बोल फुट्ठा बच जात रहा तो मन हर फंस जात रहा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ यानी कि पेड़ के जर जौन रहा।
2: हाँ जर वो जर हम ना बता सकेल कौन जी शायद नाम सुन ले हुई बोइतरी सेदरे के पेड़ और या कौन सी बोलने और बोइतरी ग्रीन हार्ट हम लोग के खेत में सब लकड़ी रहा भैया जी। बकिन आज दिन तो हम आप लोग
0: नहीं आप बोलो है भैया श्री गोविंद पहले भी हम लोग के घरे भी रहा तो भुइया के जमीन रहा मट्टी के जमीन रहा तो ओके सवेरे गोबर से लीपल जात रहा।
2: हाँ वो हमार माता जी लीपत है और जब हमार विवाह हो गए तो हमार धर्म पत्नी ओके लीपत रहा और मटियारा मट्टी हम खोद के लावत ही खेत में से तो गोबर हम लोग के ढेर गाय रहा तो हम लोग पहले वही पे सूतत रही तो साका भी ना रहा भैया।
0: नहीं मार जब वो झुराई जात रहा भैया श्री गोविंद तो कितना सोना महकत रहा कितना अच्छा दिखत रहा
2: ओकर महक से था तो आज तक हम जिंदा बाकी। वो जमाना चल बोले गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा आता नहीं दोबारा।
0: तो बड़ी पुराना धुन छेल लो
2: भैया आप लोग के हम कैसे धन्यवाद दे। हमारे पास तो एक से एक विचार है एक से एक गाना है और जोन ओकर तो हम नमो न जाने ला जोन गाना गा रहा सिर नाम के एक लाइन मार दे
0: मार दे मार दे।
2: श्री नाम हमारा प्यारा देश श्री नाम हमारा प्यारा देश भैया उसको हम जीते जी कभी न भुला पाऊंगे उसको बलि बलि हम करते बयान श्री नाम हमारा प्यारा देश भैया उसको हम जीते जी कभी नहीं भुलाएंगे।
0: भैया जी गोविंद बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि सुरीनाम के वासी हम सब हैं और जहां हमारा मातृभूमि है जहां हम सबके देश में जहां पैदा भइन है वो देश महान है उसको हम भूल नहीं सकेंगे कभी।
2: तब भी न भैया ओम शांत है हम लोग चला ही ली हम तो निखनते 70 से यहाँ बाटी और काम कर ली बहुत
0: तो तरकारी वरकारी खेत में लग गए हैं
2: सब कुछ लगा ली भैया सब कुछ। बोले जब बीज हम बोईला तो कुछ न देखा है बकिन जब फरे है तो वही धरती मैया के और सूरज देवता के हम आशीर्वाद देला वही हम कुछ न करीला हमें हुक्म मिले है कि जा ये काम करो वो काम करो तो वही हमें आज दिन तक हमार इच्छा पूरा कर जा जोन कुछ बाकी है तो परम पिता परमेश्वर लिख के दे से वही पूरा हो जाए। कोनो गाना मान सकेला कि ना माखे
0: अब हो गया तो हमने थोड़ा आगे बढ़ी और लोग के मौका देवल जे थोड़ा से बयाल करके।
2: अच्छा जब हो सके तो एक गाना है आके दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम सदा रखा है ये गाना हम मांगे रे अपने धर्म पत्नी के अब थोड़ा रोज बाद हम लोग फिर से अस्तक यार कहोगे शायद जो हो सकी भैया ती गाना बजा देते तो हम तो के बहुत
0: भैया शिव भूमि आपके जुबान हमारे सर आंखों पर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रीमती को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के और हम लोग को कुछ न कुछ बताओ है ताकि हमारे आने वाले नस्ल जौन है हमारे आने वाला पीढ़ी जौन है तो वो सीख सके कि कितना कठिनाई के साथ में हम लोग सन्नाम में अपन जीवन बितैलिन है।
2: अबे हमारे पास बहुत चीज है भैया बाकी अबे जैसे तो बोलो आज प्रोग्राम आप आगे बढ़ा हम बकरे फैल और भैया लोग मांगे हैं बाकी जो हो सके ये गनवा दबा बजा दे तो थोड़ा सा मुश्किल मार दे आज।
0: ठीक है चिंता ना करो हो यही।
2: अच्छा हम सुने ले भैया।
0: अच्छा
2: हम अपने दिल से आशीर्वाद ना सिर्फ तो के देला सारे टीम को पैसा तो ना दे सकेला बाकी आशीर्वाद दे सकेला।
0: अच्छा बस वही जरूरी है कि अपने के बड़ों से आशीर्वाद जब मिल जाए तो उसे बढ़ के और दुनिया में कुछ ना है
2: कुछ ना बोले माँ के चरण छू लो भैया वो जो आशीर्वाद दे दे तो मंदिर जाए जरूरत ना है
0: अवश्य। अच्छा भैया मोहिसे रहियो।
2: अच्छा आप लोग भी अच्छा सब कोई का हमारा नमस्ते राम राम कैसे हम बोली
3: वेलकम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड।
0: ठीक है तो दोस्तों भाई बहनों आज ये रहा भैया श्री गोविंद रेजन हाउस से हम लोग को याद किए हैं भैया श्री गोविंद बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। दिल गलती कर बैठा जुबिन नौटियाल नोख सेफन ती नाखन तखान
4: बैक टू बैक सुपर हिट पर लड़की किसी में नहीं मिलती है ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: लवली सॉन्ग जब से तेरा फितूर चढ़ गया रे। तो आज ये प्रोग्राम में ये गीत हम आपको सुनाएं साथियों, आप सब बड़ी प्यार के साथ में हमारे साथ हैं, प्रोग्राम से आप जुड़े हैं, प्रोग्राम आप फॉलो करते हैं। एन खुई अमेदा
1: कहिए ना व्हाट फितूर ja, dat bel ik je om te vragen hoor.
0: Nou, die wil ik. Het gaat om een soort waardering naar iemand.
1: En wat zeg je nogmaals?
0: Waardering naar iemand.
1: Dus dat is die toer.
0: Ja.
1: Oké. Oh, je gaat niet belken, ik heb het niet, hè? Wat is die toer? Ik weet het niet. Is goed, bedankt hoor.
0: Ja?
1: Okay. Ja, nou, ham dikker rakle bet.
0: Tika. ओके
1: okay.
0: तो दोस्तों भाई बहनों, ये प्रोग्राम आप तमाम सुनने वालों के लिए जो पेश हैं, और आप हर एक जो रेडियो के करीब में हैं, यू मग इन बेलन 03-244-7250 एंड वी गान फर्दर। हम प्रोग्राम आगे जारी करीला और देखते हैं, प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ में फॉलो करते हैं। मैंने जेमी एंड सांद्रा अक्कल से साइन ओक फनत पताई मोये अच्छे खुरुच सोसोलोबी फन ऐत आगा ऐत डनहाग नाउ दंक यू वेल एंड ओंस प्रेसिडेंट ऐत उत्रेख ऑफ ऐत होफलीट या या आल्स एक सेग उत्रेख दन वर्ड प्रेसिडेंट बोस एंड दैट इज मैंने अश्विन लक्ष्मण अमान तक एक बैन एन एक्त रोटरडमसे Hoogvlieter en Hoogvliet, daar woon ik. En ik wens een fijne uitzending. President, dankjewel. Big up, Ashwin Lechman. We gaan naar richting Zeeland en daar worden wij ook geluisterd. Bimla en Ramon is ook van de partij. Ramon en Bimla, dankjewel dat jullie ook aan het luisteren zijn. Nou, ik wens je een mooie dag in Zeeland. Our, we worden ook geluisterd in Lelystad en Bhayan Jagisar is aan het genieten. Bhayan Jagisar, many thanks. Dil de diya hai, jaan tumhi ko denge. Daga nahi karenge sanam, never, never.

0: करेंगे।
1: Never, never, never, no. दिल दे दिया है तुझे जान तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ये मेरा वादा है। आज ये प्रोग्राम है द पावर ऑफ लव अमोर एफएम, पौने तीन का वक्त है, स्टूडियो टाइप 443, और आप बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम से जुड़े हैं। अम्स्टरडाम में हमारा कैपिटल शहर में तब डीजे डीजे नाल्डो बुधान, द वांटेड डीजे मिस्टर नाल्डो बुधान, ऑलवेज ऑल टाइम आज हमारे साथ है। तो भाई नाल्डो बुधान को हम बहुत बहुत प्यार बताते हैं कि हमारा कैपिटल शहर अम्स्टरडाम में प्रोग्राम सुनते हैं। बहना सानू ज्वाला प्रसाद भी अम्स्टरडाम में हैं, और अम्स्टरडाम इस मसाल अनत लुस्तर एन खुदा या हेलो
2: भैया राम
1: हाँ कांति कुमार बोल
2: ना राशि ना मंगे बदल कर दी
1: हाँ बोल
2: तो मैं कुछ टोटी काटी देखिए कोई ना बैल कर

0: अच्छा रहा, अच्छा।
1: और घर के
2: अब सोचा रह लेते हैं, अब जब मांगे प्लासा कर रहे हैं, अब बाप का जगह है, मैं किरकी लगे ठंडा कर रही, मैं प्लासा कर रहा प्लाक फिर दो रहा।
0: क्या बोले जा फिर सूझ जा।
2: क्या बोले भैया?
0: बोले फिर जा सूझ जा।
2: हाँ
0: नहीं सही देख पे गो बास स्कूल भी रहा, वहाँ पर हमने स्कूल भी गई लीन है,
2: वहाँ पर गो फुटबॉल खेल भी रहा,
0: हमने वहाँ क्रिकेट खेल लीन है, क्रिकेट क्लब जय हनुमान।
2: जाने मॉर्निंग कहाँ रहा था?
0: मॉर्निंग जानी ला। हाँ
2: रोज आते वहाँ पहुँचे।
0: हाँ मॉर्निंग लगे वहाँ पिकनिक होत रहा भी। नाउ वो सब यादगार चीज है, मॉर्निंग अब तलक है वो पीर जाऊँ रहा मार ओके सबन बंद कर दे है वहाँ न जाए सकल जाए सही। सावन के झलवा भी जानी ला। हाँ उतई तरह जब सावन के झलवा होत रहा पहले तब समुन्दर किनारे से इदेक पर होत रहा जहाँ ईटा बनत रहा।
2: अब हम कहते हैं जाते थे वहाँ पहुँचे तो मलेवन जाल लगा रहा था, तो यहाँ से देख पर ढेर मलाई भी रहा था।
0: सही देख पर हेला हेला लीनी पर खाली मलाई रहत रहा और हम लोग पहले वहाँ बहुत स्निपी उतरत रहा तो हम लोग काबल वाप करत रही लीन।
2: ओके भले तो जान तो याद पड़े जहाँ बोले जहाँ इटवन मरने हैं बनावा तेल बोले वहीं हम लोग जाए एकदम मलाई वाला को धोराई ले लो बच्ची लेकर जोर से तराप करके भाग ली घर।
0: मलाई लोगन पहले झिंगा झुरवावत रहा ब्रोकी पर मछरी लकड़ी पर झुरवावत रहा तो मलाई लोगन कंटिन्यू सब सब मच्छर मरवा रहा जितना रहा उस सब के दाल रोटी वही से चलत रहा।
2: बस वही तो हमारा माय बाप भी बाजार कर रहा था निकेरी
0: में निकेरी। ओके
2: और मलाई वन में वहाँ बेचा रहा था हम जाए हम ढोरावे उनके करने से लेके
0: तो हमें देखी हमें कुछ न बोली हमें चीजा था हमारे मीठा आम है। जब पक्के तब पेड़ में हम नीचे से महक जाते रहा ऊपर
2: हम लोग चोरी करे।
0: मैंने कांति कुमार थैंक यू हमें रकलामो की ओर जाए के हैं तब फिर बतियावल जी ये कार्यक्रम आप तमाम सुनने वालों के लिए पेश है 3:04 और हम चले तो हम ब्रेक की ओर अब आपको लेके चलते हैं।
3: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar Ait India 25 yaar erfaring Kundali se vicharte hain Janm Kundali haath dekh kar aapko rai dete hain iska oplossing dhoondte hain Mantra Tantra se dur kar dete hain aapko job ka problem hai business financial negative energy family relations paisi ko aapko problem hai sab hal kar dete hain Guruji Ravi Shankar jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9013 99 96 95 0613 39 96 95।
4: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67 Hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070-380-7351. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
5: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21 dagen.

0: FM and Surface Inside. Juven Nautia. Live met alle Bollywood hits. Op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
1: Hare. Einde reclame.
2: दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में रिक्लाम आप सुनी और रिक्लाम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम से जुड़े हैं तो ये घंटा भी आपको मौका देते हैं। बहुत सारे एपर्स है, हेल फेल एपर्स डिजाइन मोमेंटल आनत लोइस्त्र आनत खनीत फन अमोर FM en luisteraars, u krijgt de gelegenheid om wederom in te bellen. Aur hamare appers ke saath mein hum ye ghanta bhi aapke saath hai aur hum log saath milke agar aap hame tar karte hain to aapko hum swagat karte hain, welcome karte hain aur dekhte hain. We hebben telefoontje. Een goeie middag.
3: Een heel goeie middag, Sandeep Bhai, met Suresh Loknath.
2: Meneer Suresh, de enige echte meneer Suresh Loknath.
3: Loknath. Latina hai, maar alsnog gefeliciteerd, want je programma woensdag am etna taar kerli, maar ik kwam niet in de uitzending.
2: Ka kareli, bhai, Sandeep Bhai, aap ke long ke pyaar itna jada hai, ham dil se abhari hai lin, ki aap long itna pyaar de hai, aur... Dat hoort weder, wederzijds respect. Zindagie mein hum log kaun chalai ke lin, kaun chalai ke jawal jai, yahi saath jai.
3: Sabbo dher jane soche, dher chit leke jai sab.
2: Agar safed kapda mein je bhi rahat, tam sochi aadmi wel koshish karat, maar helaas.
3: Dekh bhaiya, are yahi baat jab paral, dekh Amani bhai, India mein kitna mahal banaye, sab phir kain kai millionan ke go nawa ghar bane. भैया संतोखी देख छोड़ के कितना चल गया।
2: वही हमने देखेला दुनिया के, हमने देखेला कि के कौन ची लाई के आयल, के कौन ची लाई के जाई, और फिर भी हम लोग बतियाई लेला मां, जब हमने भुलाई जी तब बोली मान कहां ग्राब करके धल ली।
3: हमारे एक चीज है का बोले वो मार्क नीट फॉर ऑन्स आलस वाट वो मार्क लात वो आखतर तो maar ja, Sandeep Bhai, alsnog gefeliciteerd. Ik heb gehoord dat zondag een mooie dag ook gehad. Mm-hmm. Dus we leefden met je mee.
2: Nee, dankjewel voor je aaplonke pjaar, aur aaplonke ashirwaad, aur jivan mein kaunchi hai, bas ek dusre ka prem ke boli bol le, bas wahi hai.
3: Yehi hai to hai, ya, theek
2: hai. Kaise baato aap, kaise hai sab?
3: Haan, mooi hai, sab cheez mooi.
2: आपके शहर में मौसम सुहाना है।
3: हाँ, okay.
2: अच्छा, तो अब 4 बजे धीरे धीरे सोचल जाए कि अब आज कौन सी रसोई घर में बनी।
3: अरे बन तो चुका, हम सब बनेली दाल भात बचाओ और चौरैया भाजी चनांग पहली।
2: अब चौरैया के भाजी, अमसोई के भाजी, अब हम देखिए फूल निकले लगल।
3: हाँ, तो ओसा और कौन सा आदत है ना, दाल भात बचाओ चौरैया और भाटा चोखा।
2: ओके, आपके आपके बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निमंत्रण दे लो है, कि अतिथि के भी सोचो है कि देख हम लोग के वही हम लोग के रसोई घर में, हम लोग के अंदर में, सन्नाम के आदमी के अंदर में वो खासियत है भैया सुरेश, कि हम लोग खाई के बनाए तो अतिथि खर्तिन भी सोचल जाए, कि थोड़ा से ओकरे खर्तिन भी बनाल, कि कौन दरवाजा पर दस्तखत दे, कोई दरवाजा पर आएगे तो बोले भैया आप भी एक कौर आप भी खा लो। मोई से प्रोग्रामा सुनो और आपके भी बहुत बहुत शुभकामना, और हम सोचिला कि भैया राज भी सुने हैं तो भैया राज आपके भी राम राम करे हैं।
3: हाँ, सबके भी हमारे तरफ से राम राम, और जितना सुनो या सबके राम राम, सलाम और नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: और बोला रही और सुन रही हो,
2: देखल है भैया सुरेश लोकनाथ। ठीक है, शुभकामना आपको।
3: अच्छा, राम राम,
2: सीताराम सीताराम। दोस्तों भाई बहनों, 3 मिनट ओवर 3 और मिस्टर जैक पांडे भी हमारे साथ है, बड़ी प्यार के साथ भी, बहुत भीड़ भड़क्का में है। भैया जैक सब ठीक ठाक है?
4: बहुत बढ़िया।
2: करीब करीब करीब आ जाओ भाई जैक। और भैया जैक, आप लोगों को पता है कि स्टार्स आवे हैं सर नाम से, द नंबर इन बैंड सर नाम से आवे हैं। और भैया जैक कब उलग उतरी यहाँ नीदरलैंड में?
4: सबसे पहले हर एक सुनने वालों को मेरा नमस्कार। भैरा वहाँ स्टार्स का पूरा प्रोग्राम सारा तैयारियाँ हो चुका है।
2: तो
4: सबसे जबर वेलकम पार्टी भी है। और एक बड़का खुशखबरी और फर्रा सिंह, आप
2: अब हम लोग वो बड़का खुशखबरी देवल जी, तो हम लोग के रेडियो के डायरेक्टर भी रही, मानी भी है, तो हम लोग अब लोग हम आप लोग के एगो खुशखबरी है देवल जी। तो हम देखी ला एगो तार भी आवे, तार के ले लिया जाए। खुद मेरा
5: राम यांकी
2: मैंने राम यांकी अत हार्दर वाइक मैंने राम कैसे बांटो आप?
5: अच्छा अच्छा भाई,
2: खुद की जहाँ मछली छलांग लगावे है, जहाँ हमने डॉल्फिन जाइला देखे रोटरडम से, वो शहर से आप बेल कर लो है?
5: बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी हम लोग जाला कटिया भी लगावे, तब हमारे भाई लोग जा तब पकड़े हैगा स्नूक बार्स।
2: स्नूक बार्स?
5: हाँ हाँ हाँ,
2: बड़का भाई बड़का बड़का स्नूक बार्स मिले हैं?
5: हाँ बड़का। और हम लोग तो श्री राम देश में हम लोग खेतियार रही, गाय गोरु हम लोग मछली मारत रही, हम लोग के काम वही है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, मर यहाँ कौन कौन जूनी, हम सुनी ढेर आदमी जा कटिया लगावे, मर कौन जूनी स्नूक बार सही वक्त है कटिया लगावे के?
5: धल्ये सूरज डूब जाए।
2: हाँ
5: देख, श्री राम देश में हम लोग कटिया जो लगाई कुकुई जाए पकड़े, तर रात के कुकुई रात के खाए। रात के जो कुकुई तू जाइए कटिया लगावे, तो तू धरिए घीचिए कटिया, धरिए घीचिए दिन के कहता खाए, काहे खाता खाए, इस बात तो ना पता, हम सब चीज ना जानी ना, भगवान जाने बाकी। और जाल जाल हमारा हमारे पिता जात रहा, जाल हुआ बॉक्स खिड़की के भद्रेकी के खिड़की में लगा देवे, संझा के जो सूरज डूब जाए बस लगा देवे, और सवेरे जाए के सूरज उगे से पहले अंधियार में बस निकाल देवे, जाल भर जाए मछली से।
2: हम लोग पहले रही ना भैया राम, तो हम लोग जाई बिगी पान अब्बे तलक है, बहुत लोग जा बिगी पान में, तो हम लोग जाई जब वहाँ पर, तो हम लोग जब जाल लगाए दी तो उमा तिलापिया फंसे, और जब तिलापिया फंसे तो तिलापिया के आतरा खाए सिरका, बड़का बड़का चंगुल वाला सिरका, तो हम लोग सिरका के खली होकर दोवन तूर तूर ली, और सिरका के हम लोग छोड़ दी, तो ओकर दोई अपने से जम जाता वहां थी। यहाँ पर भी समंदर में जो बड़का कराबू सबन पकड़े है,
5: हाँ,
2: तो ओकर खली सबन ओकर दोई ले दोनों ओकर स्करवन जौन है, कैंचियन हाँ, मौके छोड़ दे तो थोड़ा दिन में ओकर कैंचियन फिर से जम जा है। गोर दोनों जम जाए, तो हम लोग जब जाए तब वहाँ पर यानी कि फोकल फौना हुआ इतना ज्यादा है, अब तलक आदमी जब नई दला से जा है तो बिगी पान जा है, और वहाँ पर अब कंपू भी बन गए है, तो ऊपर नख्त कर सकल जा है।
5: हाँ तो सुन, जब कराबुक समय रहा श्री राम देश में, हमारे पिता जाए पकड़ के लावे बस कीटा के हिसाब, तो हम लोग हफ्ता भर खाली कराबू खाई, वो कंटेनर जो रहा खाली कराबुक डोई से भर जात रहा, खाली कराबू हम लोग खाई,
2: गाल वोल सब कट जात रहा भीतर।
5: हाँ बचाई चाहिए मामार माई कभी फोड़ के बस गुदवा निकाल लेवत रहा, तो ओके ओके खूब जैसे रे बका कर और वो गढ़ा दाल बनाओ कुछ के चोखा, तब बहुत गठत रहा।
2: देख उसब खाना पहले उस समय पर हम लोग जौन खाना खात रही लेन, तो हम लोग वाह वाह करीला कि पहले चूल्हा पर बनत रहा, पहले सोच समझ के सील लोढ़ा पर पिसात रहा मसाला,
5: चूल्हा मार माई गाय गोबर से गोतरक मट्टी से लिपत रहा, वो चूल्हा बरीसर रहे, वो ना फूटे। हाँ और सिरबोंकी के चाइला में वो कर दे लगा दे बस देख बम्बा कैसे बरे आ गई। हाँ मैं एक बात मांगा था कहे जो भाई वाह भाई ने आगे बोली से बोले कि बोले घर बनावे ई बना देख दुनिया में तो कोई कुछ लेके ना जाए मैं घर एगो घर बनावे में दर इज नेक्स्ट नहीं
2: नहीं नहीं अब्सोल्युट भाई अब्सोल्युट एगो छत एगो महल बनावे खातिर
5: एगो छोपड़ी बनावे के हम सिमिलर देख हमनी बनाईली बाकी बड़का शिला हम जहाँ हमारे माई बाप के खेत है उधर क्लेशिया में बनाईली बड़का जबरदस्त अरे शिला बनाईली बाकी ओमन ओमन दर इज नेक्स्ट मिस मई की तू एगो घर द्वार बना अरे तू ना रही तोर बाल गोपाल रही बाल गोपाल ना रही बाल गोपाल के रही है लड़का रही उसे बोली देख आजा नहीं नाना बना रही आज हम लोग के एगो ठिकाना है कहने तू बेघरी कभी ना बन दुनिया के मुसाफिर ना बन के जाए के दूसर को ये भाई आज यहाँ रात काट सकीला क्योंकि इंसान ऐसे ने एक रात बोली तू रही सके सूत सके दूसरी मैं तीसरा रात बोली भाई तू अपन रास्ता भी ना जो चलाक मने जो है वो आगे दस पांच दस बरिस आगे सोचेगा तू ना सोचे आज हमें एक रोटी हम खाए के दोन कर दे ध्यान बत्तीस दांत बाइक के ताकत नहीं वो आगे सोचे अब बेचे फोर बराई चाहे फोर वाटर को मकान पकड़ाई के चलाक मने और हम लोग के हम लोग ऐसे हम लोग हिंदू भाई लोग ऐसे बाटी की बाल गोपाल के सोची ला और जो पोसिटी में हमारे माए हमारे माता पिता रहा हम लोग कोशिश कर ली उसे और ऊंचा आवे के और हम लोग अली इस बार वेल ऐसे वे
2: नहीं भाई राम बहुत अच्छा लगल कि आप हार्दर भाई से तार कर लो है और भैया जैक पांडे भी आपके राम राम नमस्कार करे हैं कि आप इतना इतना बताइले हैं पर जब बताइए तो हम लोग भैया जैक के पास बहुत लंबा लंबा कटिया है और बहुत गंभीर वाला कटिया है हम लोग सही कर आप इसी कटिया लगावे सुख बार पकड़े
5: हमारे बाप भी जा
2: अच्छा अच्छा
5: सौंदा खेगा मातृ दीवी मुदर दा खेगा हम आहत रहे दुनिया में जितना माई है जितना बेटी लड़की सब है हमारे सबके सब एक शुभ दिन प्रस्तुत करे
2: रिहल भाई राम आपके बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करीला कि आप मुदर डाक के सभी मुदर बहन लोग के सबके राम राम और उनको बधाई दे हैं और अच्छा लगल कि आप अमोर एफएम के प्रोग्राम सुनो है और आपके भी हमारे पूरा टीम के तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
5: और आप लोग के भगवान की कृपा आप लोग के कि आप लोग प्रोग्राम हरदम पेश कर रहेगा और चलते वक्त में भगवान आप लोग के दर्शन करे सब कुछ आप प्रोग्राम बढ़िया से पार हो गए
2: अरे ख्याल है भाई राम
5: ओके भाई
2: ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीताराम। दोस्तों भाई बहन ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सब जितना भी महारथी आज स्टूडियो में भाई मानी कैसे है सब ठीक ठाक है भाई मानी
6: सब सेंटा है
2: देख भैया लंबू बड़ी जोड़ हंसे है
6: कुछ हंसते हाँ, रहे हैं
2: मेरा ख्याल से कुछ संदेश मांगे हम लोग के बतावे
6: बताओ भैया
4: बात ये भैया मानी के देख करके तो सर नाम याद आ जाए गर्मी अभी बदन में से
2: भाई जैक सही बहुत तैयारी में लगल है बोले कि बोले हम लोग तैयारी में है और सोमवार के बरका दे लेखाची आवे है
6: सूर्य नाम से हमें यूरु करी से सबके लावे के
2: भाई मानी तो ताक कौन चीज है
6: बड़ी बड़ी ताक बहुत ढेर है
2: अच्छा तो उस एक कंती जुबीन रही और एक कंती भाई जैक कुछ हुई ना भगवान हमने सोची ला कि हमने बेनकौरत कुछ बतावल जाई कि मौका अबे ऐसा चीज नई दलांत में न भइल है
6: या
2: एक होर दनत या दत्त हमने भी साथ है भाई जैक है और अबे हमने सोची ला कि थोड़ा देर में हमने संदेश देवल जाई तो जनता आप लोग सुनियो और भाई मानी आप कुछ तैयार करो है हम दिखिला कि कुछ स्पेशल आप मांगे सुनावे हमारी जनता के
6: ना ना ना ऐसे ना है हम कुछ खोजी ला वैसे तो हमेशा खोजते रहिला जीवन भर लेकिन अब मिल गए
2: हैं हमने कहा भैया आनंद अर्जुन शर्मा भी बड़ी प्यार के साथ में सुने हैं
6: आनंद जहाँ भी है सुंदर भी जहाँ पर है आप दोनों खुश रहे तंदुरुस्त रहे और कोई अलती गलती काम ना करें।
2: बस वही बात है, सीधा रास्ता चलियो और कोई गलत काम ना करें,
6: और गलती से मिस्टेक ना हो पावे।
2: तो सब कोई है यहाँ पर, सब कुछ है हमारे पास में दोस्तों भाई बहनों। आज ये प्रोग्राम जो हजारों हजारों लोगों के लिए पेश की जा रही है, और एक गीत है जो यानी कि हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, द स्टार्स के बात हुए हैं तो भाई जैक पांडे अपने जितने भी स्टार्स के फैंस हैं उन लोगों के लिए स्पेशली, भाई जैक हारे हारे हारे दिल से हारे,
4: एकदम दिल से भाई राम।

0: तो भाई बहनों हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे तेरी याद में पल पल ये दिल रोता है न सोता है न जगता है भाई जग बड़ी बड़ी गंभीर गाना है
1: हकीकत में हाल हो
0: है। और भाई रोहित छेदी भी आवे है तो खुरपा में
1: पूरा ग्रुप है स्टार्स के सेस फ्रंट लीडर्स यानी कि सांगर्स एंड सांगरेस एक है
0: ओके तो सही लग कंप्लीट टीम स्टार्स के
1: कंप्लीट एकदम
0: थैंक यू हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे पल पल तेरी याद में यह दिल रोता है न

हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे, पल पल तेरी याद में ये दिल रोता है ना सोता है। मिस्टर जैक पांडे और सभी सुनने वालों के लिए, स्टार्स के जितने भी फैंस है, अब समय आ गया है, कुछ दिन बाकी है तो स्टार्स सुरीनाम के नंबर एक यहां पर नई दलांत में चप्पा चप्पा आप लोगों को बताएंगे। अमोर एफएम के प्रोग्राम सुनते रहे और अयुत खान साखेंदा सुनते रहे, कहां कहां पर हम लोग बजाएंगे। तो दोस्तों भाई बहनों, भैया राज पांडे, यहां राज है वहां माइका है, और जहां माइका है वहां राज है। माइका बोले खबरदार राम बोली बात तू ना बोलिए, जहां माइका है वहां राज है, औरत के राज चलता है भाई जैक। रीति रिवाज के मुताबिक से चाहिए बात करें कि नहीं करते इन मिनटन ओवर थ्री। तो दोस्तों भाई बहनों, आप सब रेडियो सुन रहे हैं और देखते हैं प्रोग्राम बड़े प्यार के साथ में फॉलो करते हैं, और वो है मफराव सेल्फी भाईरो सिंह और एक फंदाख सेम मैथ आलू द्रोह तीता तीता कोकन नाउ दाखिया कि आप दाल भिंडी डल्लो है और खाना भी कुछ अलहदा है। तो मफराव सेल्फी भैरव सिंह, आप आलू द्रोह सेम तीता तीता और दाल भिंडी के दार के बनाई लो है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि आज आप खाना खूब खाइयो, प्यार से खाइयो। मफराव इरीन अब्दुल ओक दखरुचस हुई मेदा खमने राम लुक ओम वेयर यू तो हो रन एन फैन आउटस्टैंडिंग एन एन लिव द फॉलो दख फर्दर एन नामस इरीन अब्दुल ऐत दन हाग। मफराव इरीन अब्दुल dankjewel voor je app. Mevrouw Bina Harpal is ook aan het genieten van Amor FM. To dekje bhai bhano, itni tadat mein program suna jate hain. En helemaal Amsterdam Zuidoost is ook aan het luisteren. En dat is Isla Sadal. De heer Isla Sadal uit Amsterdam Zuidoost. Dankjewel dat jullie ook aan het genieten ben. Our राधा जगई एक लॉयस्टर आउट हेलमोंट। भैया जग देखिए हेलमोंट में लोग हम लोग के सुने हैं, और दंकवेल राधा जगई दच ये हेलमाल इन हेलमोंट आनत लॉयस्टर बैन। एक बैन आनत वर्क एन लॉयस्टर एल्क दख नार योली प्रोग्रामा दंकवेल दच ये खनित फन अमोर एफएम। साथियों आज ये प्रोग्राम में हम आपको ले चले गीत की ओर, और ये गीत भी स्पेशली आप सुनने वालों के लिए पेश है, और ये गीत आप तमाम के लिए

हाँ, जब अपना दिल है तो मस्ताना और बड़े प्यार के साथ में। दोस्तों भाई बहनों, आप प्रोग्राम फॉलो करते हैं, प्रोग्राम आप सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे एप्पल साज हमारे साथ है भाई। कैसे भाई हैंक महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हुई मेरा ओक इन सुरीनाम इस रेडियो अमोर तबलोसन ए खनित एन वै खनित एन ओक फन यू मोये लीदरन ख्रूचस एट ब्राबंत Ben momenteel in welgelegen, nou in Suriname. Aapke naam to aap bataye nahi hai, par aap program Amor FM ko Suriname mein sunte hai. Aur momenteel Brabant mein aap hai, aur program aap follow karte hai. Bahut bahut dhanyabad. Aapke shubh naam hamare paas nahi hai, par isme koi koi galti nahi hai. पर आप प्रोग्राम फॉलो करते हैं। संद्रा इस ओकानत खनीत खुई मेदक मने राम इक खनीत फन द प्रख्तक मोये लीदरन ख्रूचस फन संद्रा संद्रा दांकी वेल। और देखते हैं प्रोग्राम भी। नल उदयराज सिंह बोले बम गाना है राम, बम गाना होना चाहिए मफ्राउ नल, जब आप हम सब बम है तो बम वाला गाना भी होना चाहिए। जॉइस एट होफलित इस ओकानत खनीत। और खुशी की बात है, सुरीनाम निकेरी से आए हैं वीर प्रमोशन का द मैन हिमसेल्फ मिस्टर अमर दुर्गा। हाँ, मैंने अमर दुर्गा इस वक्त दनहाख में घूम रहे हैं और साथ में छोटा भाई ताराचंद जगेसर, यानी कि हमारा ऑफिसर भी है और आम्स्टरडम में यानी कि माकलार भी है। घर खरीदना है तो इनसे एक बार आप मिलिए। ताराचंद जगेसर और वीर प्रमोशन का अमर दुर्गा दोनों साथ है। और भैया जैक पांडे ये लोग को भी बहुत बहुत प्यार बताते हैं। तो वीर प्रमोशन का सब जितने इनके दोस्तों हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार बताते हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ से याद करते हैं और याद करना चाहिए, क्योंकि आप सब है तो हम है। और आज ये प्रोग्राम में अमर एन ताराचंद आप दोनों को हम याद करते हैं। तो लीजिए आज ये प्रोग्राम में यानी कि यारी पर, हमें आप लोगों की यारी पर बहुत कुर्बान है और ये दोस्ती हमेशा अमर रहे। जीना इसी का नाम है और प्रोग्राम में पेश है। दो दिन के जिंदगी में भाई ताराचंद जगेसर एंड भाई अमर दुर्गा मेरे ओर से, भैया जैक पांडे की ओर से स्वागत करते हुए। 5 मिनट ओवर हाफ 4 हियर बाय अमोर एफएम

साथियों, आज ये प्रोग्राम में आप सुने और ये गीत स्पेशली आपके लिए जो पेश की गई, किसी का प्यार मिल सके तो ले ले तू उधार, किसी का दर्द मिल सके तो ले ले तू, किसी का दर्द हम ले सके तो ये दर्द मिल के बांट लेते हैं, जीवन जिंदगी इसी का नाम है। आज ये प्रोग्राम में साथियों आपको सुनाए और सुरीनाम निकेरी से आए हुए वीर प्रमोशन का अमर दुर्गा एंड ताराचंद जगेसर दोनों साथ हैं। आप लोगों को अमोर एफएम स्वागत करते हैं और साथ में यानी कि एक्सप्रेस का मिस्टर प्राको भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो प्रकाश मल्लू इन दोनों को भी स्वागत करते हैं। भाई प्रकाश, आपका साथी आपका मित्र प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत प्यार बताते हुए आज ये कार्यक्रम आपके लिए जो नशर की जा रही है। तो भाई बहनों, अब सी बार प्रोग्राम में गीत जो हम आपके लिए निकाले हैं और प्रोग्राम में गीत आपके लिए और हमारे एप्पर्स के लिए जो प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम बड़े प्यार के साथ में प्रोग्राम अम्स्टरडम में नीता बिरतांती मफ्राव नीता बिरतांती, शुक्रिया धन्यवाद कि आप प्रोग्राम से जुड़े हैं। दत यो खनित फन अमोर एफ एम दंग गिवेल इन दम्स को एंड दत इस मफ्राव नीता बिरतांती। मफ्राव गीता ग्रेखपाल प्रोग्राम भी सुनते हैं, खुई मिदख बनेराम बेन ओक अफगस्टेम्ड ऑप अमोर एफ एम, ग्रूचेस आन अल लुस्ट्रांस ऐट डन हाग फन गीता द्रेखपाल खनित सेकर फन द म्यूजिक बदंक्त। नाउ दंक यू वेल मफ्राव गीता एन ओक एन एप गहाद फन मफ्राव इरेने राम खिलावन, ग्रूचेस दोस्त इरेने राम खिलावन। Irene, dankjewel dat je ook geniet van Amor FM en namens de crew van Amor FM, dankjewel. To हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं और भाई राजन गोपाल आपको भी याद करते हैं, रजीस महाबीर दनहाक में हैं और मेरा बड़ा भाई यानी कि बाबू नथी, बाबू शिवनाथ यानी कि शिवनाथ नथी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं दनहाक में, तो आपको भी हम याद करते हैं। मौसम के ऊपर ये गीत आधारित है, सुहाना मौसम सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

और मेरा छोटा भाई अमर नत्थी भी प्रोग्राम सुनते हैं, दनहाक में है। अमर नत्थी इस वक्त रेडियो के करीब में है। अमर फावा काला सांबों सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। जितने भी फैंस हैं स्टार्स का, आप लोग तैयार हो जाएं। मानदा खीर भाई अमोर एफएम, द टोटली क्रू, द बिग बैंड स्टार्स एट सुरीनाम, सो गेट रेडी। आज ये प्रोग्राम में जितने भी फैंस हैं आप लोगों के लिए ये गीत पेश की जा रही है। उसके बाद में हम ब्रेक की ओर चलेंगे। Pump up your radio volume. Come on, hit me.

0: द म्यूजिकल माइस्ट्रो अरिजीत सिंह आज ये प्रोग्राम में साथियों आपके लिए जो पेश की गई है 8:04। ये प्रोग्राम हजारों हजारों लोग बड़ी प्यार के साथ में फॉलो करते हैं और दनहाख में बच्ची लक्ष्मण प्रोग्राम सुनते हैं तो बच्ची लक्ष्मण को भी हम याद करते हैं। चुरा के मेरा दिल गोरिया चली, शिवराज भत्तू भी दनाख में है और प्रोग्राम सुनते हैं। खुई मेदाग भाई राम, शुभ दिन हो, राम राम, नमस्ते। भैया शिवराज भत्तू आप प्यार से रहो, शुभ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। ook in bellen 0344 7250। आपको याद दिलाते हैं इस नाम का नंबर वन स्टार्स आ रहे हैं, तैयार हो जाए। द ह्यूज म्यूजिक फॉर्मेशन
1: चली मैं चली,
0: द टॉपर्स दे आर कमिंग टू यू, सो गेट रेडी। द नंबर वन फ्रॉम सूरीनाम द स्टार्स

बड़े प्यार के साथ में प्रोग्राम भी सुनते हैं हेमंत मालती एंड काजल दन्हा और एक हेमंत नारायण जो रोटरडम में है। भाई हेमंत नारायण आपका भी हम याद करते हैं, रोटरडम रोटरडम करीब में है भाई हेमंत नारायण। तो हेमंत भैया कैसे सब ठीक ठाक हैं? और एक हेमंत है दन्हा में जहां हेमंत मालती एंड काजल साथ में हैं, बहना शर्मिला दन्हा में है और शर्मिला बहन को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: और बहना द मेलोडी क्वीन जिसे हम कहते हैं सुरीनाम में, और बहना द चटनी क्वीन मोतीमाला भोला सिंह प्रोग्राम सुनते हैं। तो भाई जैक मोतीमाला भोला सिंह भी सन्नाम में हम लोग के सुने हैं। बहना जी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप सुरीनाम में हैं और हमारा प्रोग्राम से वाकिफ है। अभी भोजन के समय पर हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं, तो आपका सुंदर आवास, आपके कोयल जैसी आवाज को हम तारीफ करते हैं और आप हमारे साथ हैं, प्रोग्राम से आप जुड़े हैं। तो बहना आपको भी बहुत बहुत शुभ दिन हो और प्रोग्राम आप सुनते रहें। आज ये कार्यक्रम हजारों हजारों लोग सुरीनाम में सुनते हैं, दम ब्योरख में भी प्रोग्राम सुना जाते हैं, परिवार भोलाई एन परिवार अतवारी सुरीनाम में है। भाई प्रदीप केहरी भी लई दिंग नई खा में है, प्रोग्राम से जुड़े हैं। लिंक में सुरीनाम
1: चुरा के दिल तेरा चली मैं चली।
0: और गांव के मुखिया भैया जिन भैया जग आपको बड़ी प्यार से नमन करते, झुक के आपको नमन करते हैं।

रेली चली मैं चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। सुरीनाम के तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार बताते हुए आप प्रोग्राम सुनते हैं। शर्मिला रघुबर सिंह इस वक्त गाड़ी में है, गाड़ी में होकर और प्रोग्राम से जुड़े हैं। बेया अमीर सुरीनाम में प्रोग्राम सुनते हैं और भाई रॉय हरंगी यानी कि कोमोवैने में है। और भाई रॉय आपको भी हम याद करते हैं क्योंकि आप सुरीनाम में होते हुए प्रोग्राम से जुड़े हैं। और दोस्तों भाई बहनों आपको याद दिलाते हैं कि जुबिन नौटियाल फिर अंतविंदक मई को आहोई आरटीएम स्टेज में। पर एक और खुशखबरी आपको हम देंगे, जो लोग जुबिन के प्रोग्राम में आएंगे तो वो खुशखबरी आपको भी हम देने वाले हैं। आप प्रोग्राम फॉलो करते रहे। जितने भी जुबिन जुबिन नौटियाल के फैन हैं, आर यू रेडी? द मेलोडी किंग, रॉक स्टार जुबिन नौटियाल।

The Melody King, de rockstar Jubin Nautiaal, 24 mei live, RTM Stage Ahoy. Aur Jubin ek taraf Bharat India ke number 1 aur Suriname ke नंबर एक जब साथ मिलेंगे क्या ख्याल आपका है आप बताइए क्या ख्याल है आपका क्या होगा ये सब हो सकता है आप प्रोग्राम सुनते रहें आप मोर द पावर ऑफ लव प्रोग्राम आप सुनते रहें 29 gemeenten overwegen een verbod op fatbike 70 gemeenten wachten op een landelijke beleid fatbikes worden mogelijk verboden in alle 30 gemeenten Dat blijkt uit een rondvraag van de ANP onder alle 342 gemeenten, waarbij 246 de vraag hebben beantwoord. In totaal zeggen 29 gemeenten dat er misschien plannen worden gemaakt om fatbike te verbieden. Ab dekha tamasa ki Nederland mein हमारे नौजवान लोग फैट बाइक जहां देखो दुकान में घुस जा भैया दुकान में घुस जा बोले ओ मुसेरा ब्रेदे गिमिनो तो फैट बाइक लेके अभी सब इतना थेथर होइगे कि फैट बाइक लेके दुकान में घुस जाए दुकान के बगले में चलावे हैं लोग के धक्का मार दे हैं तो अब खमेंत सोचे हैं कि नीखन ट्विंत खमेंत 29 खमेंत ओवरवेग करे हैं ये लोग सोच विचार कर रहे हैं कि फैट बाइक को उस खमेंत में चलाने के लिए फरबोत किया जाएगा अब ये लोग लंदलक फरबोत की सरकार कौन फैसला लेते हैं कोई फैसला लिया जाएगा तो खमेंत वाले ये लोग अपना फैसला सुनाएंगे कि ये लोग चाहते हैं कि खमेंत में यानी कि फैट बाइक अब ये लोग इतना ज्यादा हद से ज्यादा हो गए है कि हद से ज्यादा भैया नौजवान लोग औरों के जीना परेशान कर रखे हैं तो अब पता लगल है नेखन ट्विंत खमेंत ओवरवेगन अन फरबोत ऑफ फैट बाइक एंड सेफ 70 gemeenten wachten op landelijk beleid. तो साथियों चलिए आज ये हम आज कुछ प्रोग्राम है और द स्टार्स के इतनी ज्यादा फैन है कि लोग हमें तार करके बतावे हैं कि बोले भैया भैया राजन गोपाल बोले भाई तू बोल दे ले बोले अब हम अगोरीला गिनीला कई दिन पास हुए कि स्टार्स कब आवे नई दलांत में हमने फिर से पाई मजा मारे के तो भाई राजन गोपाल आपके लिए स्पेशली और आपके तमाम फैन के लिए स्पेशल चटनी मिस्टर रोहित छेदी द स्टार्स द नंबर वन ऑफ सूरीनाम

चाहत को भुला देना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज ये प्रोग्राम में द स्टार्स uit Suriname Nederland आ रहे हैं एंड ऑफ 24 मई दिस इज एन यूनिक शो जुबिन नौटियाल एंड स्टार्स uit Suriname टुगेदर 24 मई आहोई RTM स्टेज। सो मेंसे फॉर alle info blijft u afgestemd op Amor FM. Dit is nooit eerder gebeurd. Stars uit Suriname en Jubin Nautial, the number one, the rockstar uit India. 24 mei, Ahoy RTM stage. So get ready. Dit is Jubin Nautial.

ये गीत स्पेशली शकीला निवाखैन में है, प्रोग्राम सुनते हैं। दिनेश निवाखैन में और रोशनी निवाखैन में प्रोग्राम सुन रहे हैं। दिनेश एंड रोशनी एंड शकीला, भाई वाहिद ननेखा।

हेलमाल चुरियाम अश्विता मदारी कहते हैं राम जी क्या गाना है माय लवली सॉन्ग सॉन्ग बाय द मेलोडी किंग जुबिन नौटियाल अश्विता मदारी दंकीवाल द पावर ऑफ लव खनिज इन सुरीनाम

दोस्तों भाई बहनों, आज ये प्रोग्राम में ये गीत आप सुने 17:05 अभी अर्था सखेंदा होगा। न्यूज के बाद में भोजन, भोजन के समय पर चटनी। और दोस्तों भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा खबर है कि जुबिन नौटियाल के साथ द स्टार्स एक पोडियम पर एक साथ आप तैयार हो। दित विली सही कर मई माक 24 मई आहोई RTM स्टेज द स्टार्स एट सुरीनाम एंड जुबिन नौटियाल टूगेदर फोर प्रोग्रामा में द स्टार्स। उसके बाद में बस 3 घंटे का शो जुबिन नौटियाल।

संगीत और संगीत के दुनिया के दोस्तों को आज मेरा प्यार भरा नमस्कार। भोजन के समय पर चटनी, ये प्रोग्राम नई दलान से होते हुए सुरीनाम, सुरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गयाना, अरुबा और ऑरलैंडो, खास करके नई दलान के जितने भी लोग हैं बड़ी प्यार के साथ में आ गए। मिर्च मसाला सब कुछ आपके पास में है, हम सिर्फ चटनी लेके आए हैं और चटनी अमोर एफएम का खाना आपका जो आप तैयार कर रहे हैं, दोनों साथ मिला ले तो क्या मस्त खाना होगा। तो इसी अंदाज में आज ये प्रोग्राम शुरुआत करेंगे, प्रोग्राम के आगाज करते हैं और प्रोग्राम में हम लाते हैं वो तोपर सुरीनाम से प्रोग्राम शुरू करते हैं। सुरीनाम के जो चटनी है तो ये कुछ अलहदा है, तीखा भी है। तो चलिए आज ये प्रोग्राम शुरू करते हैं।

The Chutney King, straight from Suriname, Chris Ramkhelawan. Chris Ramkhelawan के बाद में एक और टॉपर को आज भोजन के समय पर चटनी और सरमक्का में बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम भैया चैतो अधीन प्रोग्राम सुनते हैं. तो भैया चैतो अधीन इस वक्त लंच खा रहे हैं और बोले स्वादिष्ट लंच खाना है तो सरमक्का में आ जाइए. तो भैया चैतो अधीन आप खाते पीते रहें और प्रोग्राम में शामिल करते हैं द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ.

द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ के बाद भोजन के समय पर चटनी और उस तरफ आपका बस खाना जो आप बना रहे हैं तैयार कर रहे हैं तो मिर्च मसाला सही ढंग से डालना तो उसका स्वाद बेशक आपको मिलेगा। सुरीनाम में लोग लंच पर हैं, लंच कर रहे हैं, तो चलिए आज ये प्रोग्राम में त्रिनिदाद एंड टोबैगो का ये खूबसूरत वॉइस जिसका नाम है रकीस यानकरन प्रोग्राम में शामिल है।

राकेश यानकरन साथियों, आज गुरुवार के प्रोग्राम में, आज बीफे के प्रोग्राम में खाना उस तरफ आपका है, और आज ये प्रोग्राम है खाना के साथ में। हमेशा कहते हैं भैया, पियो तो हिसाब से पियो, पियो तो हिसाब से पियो, मन लगाकर मुंह दबा के पियो, तो दरवा ना पियो। आज ये प्रोग्राम में गयाना का ये आवाज जो हजारों के दिलों पर राज करते हैं, मौली रामचरण प्रोग्राम से सुनाते हैं।

दरवा न पियो नसवा चढ़त है, हमेशा कहते हैं कि मुंह दबा के यानी कि मुंह बिचका के और नाक दबा के पियो, हाँ मुंह बिचका के और नाक दबा के पियो तो औरों को खामुखा पता नहीं लगेगा। दरवा न पियो नसा चढ़त है। आज ये प्रोग्राम भोजन के समय पर चटनी और ये कार्यक्रम में आपको ले चले अतरिया पे लागल चोट, द क्वीन ऑफ बैठक गाना बिजानवती छाई टू।

द क्वीन ऑफ बैठक गाना बिजान वती चैतु के बाद में एक और थप्पर को आज ये प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और जैसे जैसे ये प्रोग्राम बस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका खाना का महक भी इस तरफ आते हैं। अमोर एफएम द पावर ऑफ लव, भोजन के समय पर चटनी।

साथियों, आज ये प्रोग्राम में आप सुने और दहिया पी गए। ये गीत के बाद में एक और टॉपर सुरीनाम में प्रोग्राम भी सुनते हैं और जब जब इनका नाम लेते हैं तो लोग बड़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं और वो नाम हजारों के लबों पर मोती माला भोला सिंह, द क्वीन ऑफ सुरीनाम।

मोतीमाला भोला सिंह के बाद में साथियों आपको लेके बढ़ जाते हैं और अब सी बार प्रोग्राम में एक और क्वीन को लाते हैं और ये नाम भी काफी लोगों के लिए है, तो प्रोग्राम में रस्सी का दीन दिया।

साथियों, ये गीत के साथ में हम आपसे इजाजत लेते हैं। आज भोजन के समय पर चटनी, आप तमाम लोग सुरीनाम में लंच पर हैं, यहाँ नीदरलैंड में गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं, स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं, और अमोर एफएम का चटनी, तो ये चटनी आपके खाने के साथ तो बिल्कुल लाजवाब, यानी कि चटपटा खाना आप खाएंगे। तो आज इजाजत लेते हैं, मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। आप सबको धन्यवाद। सुरीनाम आप लोग खाते पीते रहें, यहाँ पर भी लोग खाते पीते रहें। हम मिलेंगे तो आने वाले प्रोग्राम में। आप सबको प्रोग्राम देने सुनने के लिए शुक्रिया। द क्वीन ऑफ चटनी रसिका दीनदयाल फ्रॉम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो।

0: आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम याद दिला रहे हैं कि वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता और एक जाता ये जग का है व्यवहार। प्रिय सुनने वालों, मृत्यु समाचार अमोर एफएम नई दिल्ली द्वारा प्रसारित किया जाएगा, आप कृपया ध्यान दें।
1: लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदल।
0: 87 वर्ष की आयु में दनहाह के रहने वाली माता श्री धनपाल या तोसी सरजू, जिन्हें आप लोग इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे में चलकर 59 वर्ष की आयु में स्पाइकनिस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, जिन्हें आप लोग सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। 98 वर्ष की आयु में रोटरडम बे फरवार्ट रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मथिल्डा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पांडे जी की मृत्यु हो गई है। 66 वर्ष की आयु में दनहाह की रहने वाली डॉक्टर ऑन्डस आयरिस कल्लू की मृत्यु हो गई है। 75 वर्ष की आयु में नीवखैन फुलटन बाम नंबर 72 का रहने वाला पिताश्री रॉय विजय कुमार हनुमान की मृत्यु हो गई है, सूरीनाम में, जो फकांसी से गया था। और 79 वर्ष की आयु में रोटरडम होफ्लीट का रहने वाला पिताश्री ईसर प्रसाद शिव प्रसाद, जिन्हें आप लोग टका और सीमोन के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। 66 वर्ष की आयु में रोटरडम साउथ की रहने वाली माता श्री मींच लुविसा नोहर स्टकल की मृत्यु हो गई है। इन सभी परिवारों के मृत्यु समाचार यहां से पढ़ने जा रहे हैं, आप कृपया ध्यान दें।

इपनबुरुख से परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार 5 तारीख मई के सुबह में 5:30 बजे सईफ ने तख्त वर्ष किया। युमे बेटा दैनी सरजू की मां और पतो सुनीता की सास, पोता कुनल की आजी, नतपतो अंजू की अजिया सास और अयाना की पर आजी। दनहा की रहने वाली माता श्री धनपाल या तोसी सरजू, जिन्हें आप लोग इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है, जो पहले देनहाग मिलिस्तोकलान 2056 और सुरीनाम वेलखदाख आ की निवासी थी। शव देखने का अवसर राव सेंट्रम लोस डायनन देनहाग औदहाग वेख नंबर 28 पर, वो भी आज दोंदरख सैफ मई के रात में अब से लेकर क्वार्ट फोर सैफ तक और अर्थी कल फ्राइडे 8 मई के दिन में 2:30 के बीच, तुसें 2:30 Den Haag Okkenburgstraat 21 के क्रेमेटोरियम ओकनबर्ग में दाह क्रिया की जाएगी। Den Haag से परिवार अली सरजू बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार 5 तारीख मई के सुबह में 6:87 से 89 वर्ष की आयु में बेटी मीना अली सरजू की मां, दामाद ग्लेन अली की सास, नातिन रोवेना की नानी और ब्लॉसम की परनानी। देनहाग की रहने वाली माता श्री धनपाल या तोसी सरजू, जिन्हें आप लोग इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है, जो पहले देनहाग मेलस्तोकलान 2056 और सुरीनाम वेलखदाख आ की निवासी थी। शव देखने का अवसर राव सेंट्रम लोस डायनन देनहाग औदहाग वेग नंबर 28 पर, वो भी आज बृहस्पतिवार 7 तारीख मई के रात में अब से लेकर 4:15 तक, अर्थी कल शुक्रवार 8 तारीख मई के दिन में 2:30 बजे के बीच देनहाग ओकनबर्ग स्ट्रात 21 के क्रेमेटोरियम ओकनबर्ग में दाह क्रिया की जाएगी। और परिवार के मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। स्पाइकनेस से परिवार ओरी कुंज बिहारी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 4 तारीख मई के रात में 9:15 क्वार्ट ओवर 9:59 वर्ष की आयु में माता धर्मवती ओरी बंसी और स्वर्गीय पिता शिव ओरी का बेटा, पत्नी श्रीमती सुनीता ओरी कुंज बिहारी का पति, दो बेटा अविनाश कुमार और स्टीफन जयंत कुमार का पिता, 5 भाई और 2 बहन सुरेश, रजेश, सरवन, शर्मिला, रणधीर, मनोज और गायत्री ओरी का भाई, 5 छुटकी का बड़कू, 1 बहनोई का सार, 19 लड़कन का दादा, मामा, आजा और नाना। स्पाइकनिस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, जिन्हें आप लोग सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर रॉ सेंट्रम द ओमरिंग स्पाइकनिस अप्रैल से वेग नंबर 3 पर, और वो भी आज दोंदरख सैफ मई के रात में अब से लेकर 7 उर तक, अर्थिकल फ्राइडाग 8 मई के दिन में 2:30 और 3 के बीच स्पाइकनिस अप्रैल से वेग नंबर 3 के क्रेमेटोरियम द ओमरिंग में दाह क्रिया की जाएगी। और जानकारी के लिए आप तार कर सकते हैं टेलीफोन नंबर 9:45, 46, 11:92। तीसरी परिवार के मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। रोटरडम बेफरवार्ट रैनोवन सिंगल से परिवार बासदेव सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए रविवार 3 तारीख मई के रात में 10:30 बजे 98 वर्ष की आयु में स्वर्गीय पति शिव मोहन बासदेव सिंह की पत्नी, बेटा रोनी बासदेव सिंह की मां, पतो मोहनमती बासदेव सिंह छोटे लाल की सास, दो पोता जयंत और सूरज बासदेव सिंह की आजी, नतपतो निशा बासदेव सिंह की अजिया सास, पर पोता और पर पोतीन अमाया और रियांश बासदेव सिंह की पर आजी। रोटरडम बेफरवार्ट रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्दा लखपतिया
बासदेव सिंह महावीर पामदेई की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शुक्रवार 8 तारीख मई की शाम में 4 बजे रोटरडम लंगन हॉर्स नंबर 100 के क्रेमेटोरियम मोनिता मेमोरिया में दाह क्रिया की जाएगी। नीदरलैंड और सूरीनाम से परिवार बासदेव सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए रविवार 3 तारीख मई के रात में हल्फ एल्फ 98 वर्ष की आयु में सभी लड़कन सीता देवी अवतार और लड़कन शारदा रजेश और अजय बिसुन एन केंद्रन, सुरेश अनिल एन सुनील संतोखी एन केंद्रन, सबिता सीता शरीता और रामोन लक्ष्मी नारायण सिंह और लड़कन, ग्लेन हारोल्ड एडी रिकार्डो कार्मेन और सांद्रा जंग बहादुर सिंह एन केंद्रन, इन सबों की नानी। रोटरडम बेफरवार्ड रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्दा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पामदेई की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शुक्रवार 8 तारीख मई की शाम में 4 बजे रोटरडम लंगन हॉर्स नंबर 100 के क्रेमेटोरियम मोनिता मेमोरियम में दाह क्रिया की जाएगी।

0: और परिवार के मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। देन हाग से परिवार कल्लू और इजेंडोरन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 4 तारीख मई को 66 वर्ष की आयु में पति श्रीमान यान इस इजेंडोरन की पत्नी फेमके और बारंद की मां दमाद मक्स की सास पिताश्री लालता कल्लू और स्वर्गीय मां शोर्ष कल्लू पूरन की बेटी निर्मला सीता शांता त्रुस श्याम कृष्णा और सावित्री कल्लू की बहन तीन बहनोई की साली एक छुटकू की बड़की दो भाऊजी की ननद सभी लड़कन की मौसी फुआ आजी और नानी सभी दामाद और बहू की मौसिया और फुआ सास। दनहाग की रहने वाली डॉक्टर आंदस आइरिस कल्लू की मृत्यु हो गई है जो हथहाग्स ओंडरवाइस में कॉमिसी फॉर डेस्कुंडखाइट में वर्कसाम थी और हाग लंदन स्पेशल फोरगेसेट ओंडरवाइस की डोसेंट भी थी। सूचना दिया जा रहा है कि शोक सभा नहीं है और अर्थी आने वाले सोमवार 11 तारीख मई की शाम में 4:30 के बीच दनहाग वैंडाल और सिंगल नंबर 1 के क्रेमाटोरियम हाग्सडाइनन में दाह क्रिया की जाएगी। निवेदन किया जा रहा है कि आप फूल या क्राउंस न लाएं और घर पर शोक सभा नहीं है और ये सूचना दिया जा रहा है कि जब आप आए तो फ्लोर कैशुअल क्लेडिंग पहन कर आप आए।
1: चुप हो जा तेरी कौन सुनेगा दर्द भरी फरियाद।
0: और परिवार के मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। नीदरलैंड से परिवार हनुमान बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 5 तारीख मई के रात में 11:15 75 वर्ष की आयु में एक बेटी और दो बेटा सुनीता ऋषि और नवीन हनुमान का पिता सभी लड़कन का नाना और आजा निवखैन फुलटन बाम नंबर 72 का रहने वाला पिता श्री रॉय विजय कुमार हनुमान की मृत्यु हो गई है जो सुरिनाम में फकांसी से था। अंतिम संस्कार कब और कहां किया जाएगा अभी निश्चय नहीं है, पता हो जाने पर अमोड़ FM द्वारा बताया जाएगा। होफलीट से परिवार शिव प्रसाद बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल बुधवार 6 तारीख मई के सवेरे में नेहनन सेफन तक वर्ष की आयु में जेन जॉयस अन जेरी और सस्किया शिव प्रसाद का पिता हारोल्ड संजय योसेफिन और दानियल का ससुर फरीशा अनीशा जेफरी राइनेश आर्याना और अविशय का नाना एंथनी और नताशा का आजा रायन और ईशानो का परनाना। रोटरडम होफ्लीट का रहने वाला पिताश्री ईसर प्रसाद शिव प्रसाद जिन्हें आप लोग ताका और सीमोन के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर रोसेंट्रम देला द बुसम रोटरडम बुसम सिंगल नंबर 35 पर और वो भी 7:09 के दिन में 1-2 तक और सोमवार 11 तारीख मई के शाम में 6:30 तक। अर्थी आने वाले दिनसदाग 12 मई के दिन में 12:00 है नॉर्थ जाइफियोल नंबर 3 के क्रेमाटोरियम हुक्सवार्थ में दाह क्रिया की जाएगी। सूचना दिया जा रहा है कि शोक सभा घर पर नहीं है और जानकारी के लिए आप तार कर सकते हैं टेलीफोन नंबर 9644157 30 पर। आखिरी परिवार के मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। दनहाग से परिवार नोहर बालादीन और विदेशी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 4 तारीख मई के रात में 86 वर्ष की आयु में 67 वर्ष की आयु में भाई हेंद्रक नोहर और स्वर्गीय बहन झीन नोहर की बहन 10 लड़कन मींच बालादीन और परिवार सोनिया बालादीन और परिवार आशा बालादीन और परिवार, जॉन बालादीन और परिवार, ग्लेन बालादीन और परिवार, रेमी बालादीन और परिवार, सिल्फिया बालादीन और परिवार, ग्लेडिस विदेशी और परिवार, और स्वर्गीय दो बेटा आंद्रे और रोनाल्ड बालादीन, इन सबों की मौसी, रोटरडम जायद की रहने वाली माता श्री मिंच लुइसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। माता श्री मिंच लुइसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कब और कहां किया जाएगा अभी निश्चय नहीं है। पता हो जाने पर अमोर एफएम द्वारा बताया जाएगा।

लोग आते हैं और चले जाते हैं, आना और जाना इस मृत्यु लोक की रीत है। प्रिय सुनने वालों, यहाँ तक आप सब सुन रहे थे मृत्यु समाचार अमोड़ एफएम नई दलन द्वारा जो प्रसारित किया गया। आप सभी सुनने वालों से निवेदन है कि इन सभी खबरों को आप और लोगों तक पहुंचा दें, और साथ ही साथ हर एक को याद दिलाया जाता है कि कल के कार्यक्रम में एक बार पुनः मृत्यु समाचार अमोड़ एफएम नई दलन द्वारा प्रसारित किया जाएगा। दुनिया के सभी दुखी प्राणियों के दुख में हम सब शामिल हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि लोग जो बिछड़ गए हैं उनके अवगुणों को क्षमा करके सदगति की ओर उन्हें आप बढ़ाते चलें। ये जो महाप्रयाण जिस पर ये सब निकले हुए हैं, उस महाप्रयाण को सुलभ बनाएं और सदगति तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए परिवार है, सभी को सहन शक्ति आप प्रदान करें। तो यहां तक आप सब सुन रहे थे मृत्यु समाचार अमोड़ एफएम नई दलन द्वारा।

बीते हुए रविवार 3 तारीख मई के रात में 10:30 बजे 98 वर्ष की आयु में रोटरडाम बेफरवार्ड रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्डा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पामदेई की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शुक्रवार 8 तारीख मई की शाम में 4 बजे रोटरडाम लंगनहॉर्स्ट नंबर 100 के क्रेमेटोरियम मौनिता मेमोरियम में दाह क्रिया की जाएगी। ऐसे में याद कर रहे हैं आज नीदलांत और सूरीनाम से सभी लड़कन सीता देवी अवतार एन केंद्रन शारदा रजेश और अजय बिसुन एन केंद्रन सुरेश अनिल और सुनील संतोखी और सभी लड़कन सबिता सीता शरीता और रामोन लक्ष्मी नारायण सिंह और सभी लड़कन ग्लेन हारोल्ड एडी रिकार्डो कार्मेन और सांद्रा जंग बहादुर सिंह और सभी लड़कन अपनी नानी को याद करते हैं जो आज उनके बीच में नहीं है। जीवन के 98 वर्ष सबके साथ व्यतीत किए हैं और आज इस शरीर से विदाई लेकर आगे जा रही है, तो अपने नानी को याद करते हुए ये बहुत ही सुंदर गीत मांग कर रहे हैं। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान।

0: बिल्कुल सच कहते हैं, चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का मेला है, इसी में बड़े प्यार से सबके साथ मिलना है, क्योंकि वही है जो यहाँ पर रह जाता है। ऐसे में याद करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी नानी को, जो बहुत ही हसमुख थी और मजाक करने वाली थी। तो ऐसे नानी को याद करते हैं नई दलंत और सूरीनाम से सभी लड़कन, सीता देवी अवतार एन केंद्रन, शारदा रजेश एन अजय बिसुन एन केंद्रन, सुरेश अनिल और सुनील संतोखी और लड़कन, सबीता सीता शरीता और रामन लक्ष्मी नारायण सिंह और लड़कन, ग्लेन हारोल्ड एडी रिकार्डो कारमेन और सांद्रा जंग बहादुर सिंह एन केंद्रन, सब मिलकर अपने नानी को याद करते हैं, जो बीते हुए रविवार 3 मई के रात में 10:30 98 अख्त नीहंतख वर्ष की आयु में रोतडम बेफरवार्त रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिलदा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पामदे जी की मृत्यु जो हो गई है। और अर्थी कल शुक्रवार 8 मई की शाम में 4 रोतडम लंगन हॉर्स नंबर 100 के क्रिमेटोरियम मोनिता मेमोरिया में दाह क्रिया की जाएगी। तो ऐसे में याद करते हुए प्रभु परमात्मन से प्रार्थना करते हैं कि प्यारी नानी जी का जो महाप्रयाण है बहुत ही आराम से सुलभ से आगे सदगति की ओर बढ़ते चले। परिवार को शोक संवेदना प्रकट है। अमोड़ एफएम फूल 3 की ओर से यही कहा जा रहा है कि आप सबको बहुत शक्ति मिले प्रभु परमात्मन की ओर से, हेल्पफुल स्ट्रेंथ। तो आइए प्रिय सुनने वालों, यहां से आप सबके लिए कुछ मंत्र हैं, कुछ गाने हैं, हर एक तरह से यही विचार के साथ चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा कि आप इसे प्यार से सुने समझें और जीवन की जो भी स्थिति में आप इस समय हैं, जो भी स्थितिवासी में आप हैं, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई तरह से आपको इन मंत्रों को सुनने के बाद, इन गानों को सुनने के बाद, यदि कहीं से कोई भी इंस्पिरेशन आपको मिल जाए तो मैं बहुत धन्य समझूंगा कि आप प्रोग्राम सुने हैं। तो आइए यहाँ से आप सबके लिए महामृत्युंजय मंत्र हम चलाते हैं। आप प्यार से जुड़ जाइए, जो कुछ भी कर रहे हैं काम करते रहिए, बस साथ में धीरे धीरे इसे बोलते रहिए या तो सुनते रहिए, और आपका जो विचार है, आपका जो ध्यान है, वो सब शुद्ध होता रहे, ताकि आप अपने आप से मिले और अपने आप से दूर न हो। तो आइए, सभी के लिए प्रस्तुत है
1: महामृत्युंजय मंत्र। महामंत्र है जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों से, मृत्यु भय से मुक्त होकर संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का सरल उपाय महामृत्युंजय मंत्र ही है।

महामृत्युंजय मंत्र के बाद में आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर कबीर की वाणी हम चलाने जा रहे हैं। इमन सबसे मोय ई लगे है सुनत कि बोले हैं कि बहुत ज्यादा अभिमान न कर, थोड़ा से अभिमान कर सके है। मान जब बोलल जाए कि एक को बुन अभिमान न कर, अभिमान बतेकंत ऐ हो, एक को बुन न कर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐ हो तो सब कोई में बा, हमार में भी है, आप में भी है। मज ज्यादा होवे लगे हैगा तो हम लोग खतीन ई बहुत खतरनाक हो जाए। इसीलिए इस कबीर वाणी में कहा जा रहा है कि ज्यादा ना, बस थोड़ा सा अभिमान कर, थोड़ा सा अभिमान कर कि तुके कोई दहिया दे से, थोड़ा सा अभिमान कर कि आज तोर पास सब चीज आएगा जो मिलल हैगा, थोड़ा सा अभिमान कर कि अचक्के में सब हम लोग के हाथ से छूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा से अभिमान कर, बहुत ज्यादा ना, क्योंकि जितना चीज हम लोग जुटाई ली है सब एक दिन छूटे वाला है क्या। तो आइए, सबके लिए प्रस्तुत है, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो, चाहे ताकत हो, चाहे बोली हो, जो भी है सब एक ना एक दिन कमती आ जाए। तो ज्यादा अभिमान ना करे, एकदम थोड़ा से। तो पेश है आप सबके लिए।

हाँ तो प्रिय श्रोताओं, लिए लाइस्तरार थोड़ा से कर अभिमान, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिमान जब हम लोग करबे, बहुत ज़्यादा एक हो रखबे, तो पवन पवन कहते हैं हवा को, तो जैसे हवा उड़ जाए ऐसे ही हम और आप भी उड़ जाबे, और कोई जान ना पाए कि कहाँ हम लोग चल गए ली, हम लोग के खुद ना पता रही कहाँ हम लोग पहुँच गए ली है। एक फोन तुम हिल मोए प्रख्तख, तो इसीलिए आप सबके लिए हमने चलाया, और हम ये सोचते हैं कि इसको सुन करके हमारे और आपका जो मस्तिष्क है, हमारा जो बुद्धि और आपका जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आया हुआ होगा। सोचने पर हम लोगों को मजबूर कर देता है कि जो हम करीला ठीक हैगा, जो हमारे साथ हो है भी ठीक हैगा। आइए एक अंतिम गीत है आप सबके लिए, और इसी के साथ साथ तुरंत बढ़ चलेंगे कमर्शियल्स की ओर, और फिर उसके बाद बाकी के जो प्रोग्राम है आप प्यार से कोलेखा के जरिए सुनते रहना। मैं आपका सेवक दीपक बैजनाथ फिर आने वाले दिनों में आप लोगों से मिलूंगा। खुश रहना, प्यार से रहना। जय गोविंदम, जय गोपालम, जय श्री हरी।

0: टूटा हुआ दाना ना हो, बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस, बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस, ताई से पांडान राइस, सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं, पारबॉइल्ड राइस, रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं। पालमियाई तो पॉलिटाइट राइस सोर्ट एंड फॉर क्रैक बार बाई द बेहतर ग्रोथ हंडलारन सुपर मार्केट टोकोस इन नीदरलैंड बेल्जियम फ्रांकराइक एंड आंध्र यूरोपीय लंदन। कॉन्टैक्ट इन्फो न्यूवेल रिसरी डू नोर टेलीफोन 0033 328 2522। पालमी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद।
1: हे पुपकिया तू कितना चिकन लगे है, तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है।
2: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंदे मोये हुइद बाय बयानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मेट ओनसे गेस्पेशियलिसेर्डे बहांडलार्स एन होगवाडिगे अपरातूर बिदन वी यो दे न्यूस्टे टेक्नोलोजीन ओप इट गेबीद फान स्किन केयर। डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मोडर्ने लेजर टेक्नोलोजी, हिड्राफेशियल फॉर डीपर रेइनिगिंग एन hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
3: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Hef je bewerkte lenga's tussen 75 en €350. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
4: KMI Impacts, KMI Impacts, uw reisspecialist, distributeur of president Golden Sella, Lal Kila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
5: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de, wow, altaar basmati rice, test next level.
4: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw AAA-merk Jasmin Rijst. Papaji Jasmin Rijst. Extra long Goesboudar Jasmin Rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14.99.
6: Je kaas, Sunila. 1 zakka chawal en 5 kilo dal voor maar €14.99. Prabhu ke gune gaavo en dal bhaat khaavo.
4: Voor meer informatie, info at kmiimpacts.com of 06-533-90687.
7: I love my India.
0: आपको ले चले मनपसंद खाना खिलाते हैं, जहां ऑथेंटिक इंडियंस टेस्टफुल gerechten बनते हैं।
8: अच्छा, वही लाइट ऑफ इंडिया का मास्टर शेफ कॉक जफर सिद्दीकी?
0: जी हां, स्वादिष्ट खाना जैसे चिकन, लैम, फिश, साइड डिशेस, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मिक्स ग्रिल, शीख कबाब, बिरयानी, सलाद्स, वेजिटेरियन gerechten, किंडर मेनू, डेसर्ट, लस्सी, इंडियन चाय, एक्सक्लूसिव वाइनसोर्टन एन लिक्योरन।
8: लाइट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट ओक फॉर verjaardagen, recepties, bedrijfsfeesten met live muziek. Meer dan 100 zitplaatsen en buitenterras voor 80 personen. Open elke dag van 4 uur in de middag tot 10 uur in de avond. Korte Kade nummer 1, Kralingen, Rotterdam. Info voor bestellingen 010-307-2299 of www.lightofindia.com. www.bhasmati.gold.nl एक बार आइए जी और खिदमत करने का मौका दीजिए।
4: The real taste, light of India.
9: I love my India.
3: End the reclamer.